0: स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है।
1: बस बस बस ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जो काम करने से मना किया जाए ना, वो वही काम करते हैं, चुन चुन के वही काम करते हैं। मुझे लग रहा है उन्हीं में से एक है। कौन? आमिर खान। इन्हें कहा जा रहा है कि भाई सुनो, किसी भी पुरानी मूवी के एक्सटेंडेड वर्जन में मत जाओ, कोई नया एक्सपेरिमेंट मत करो। पर मजाल है कि आमिर खान किसी की सुन ले नहीं, उनके हिसाब से जो उन्होंने किया है वही बेस्ट है, वही परफेक्ट है। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि रिसेंटली जो अपने आमिर खान है ना, उन्होंने एक और प्रोजेक्ट को फाइनल कर लिया है। हाँ जी, रेस मूवी का फोर्थ पार्ट। हाँ जी, शुरुआत में जब ये पार्ट्स सैफ अली खान के साथ आए तो मजे के रहे, फिर सलमान खान को इंट्रोड्यूस किया गया, थर्ड पार्ट एकदम बेकार हो गया, और अब आमिर खान को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो एक्शन थ्रिलर उतना ही रहेगा एंड डायरेक्टर विजय कृष्णा आचार्य इसमें पूरा अपना मेहनत दिखाने वाले हैं। सो मुझे तो ये सिचुएशन बहुत ही मतलब ओके टाइप लग रही है, डाइसी लग रही है, बट आमिर खान बहुत ज्यादा इसके लिए एक्साइटेड हैं। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर दिस साइड, डोंट गो एनीवेयर, आती हूं मैं इन अ शॉर्ट वाइल।

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome.
4: You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
5: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
6: Anybody talks about magic in the country, I want them magic सुहानी.
0: Singapore, get ready to be spellbound with सुहानी शाह, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonder Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
7: How do you know these things? Stop reading my mind.
8: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
9: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक
10: जोश में रहो.
8: Hence proved कि आप इस चीज को enjoy करते हैं. So why not this time आप अपने partner के साथ एक romantic शाम, एक सूफियाना शाम enjoy करें. Right, once again इश्क सूफियाना शो by अमित धामेलिया सिंगापुर में होने वाला है. And इस बार डेट है 26th September 2026, सैटरडे वाला दिन है, 7 PM टू 9 PM. वेन्यू रहेगा ऑडिटोरियम सिविल सर्विस क्लब टेसनसन, 6 O टेसनसन रोड सिंगापुर. एंड अमित धामेलिया जिस तरह से लोकल आर्टिस्ट के साथ मिलकर आपको एंटरटेन करेंगे, ये तो यादगार बनेगा ही बनेगा. टिकट $60 and $80 में अवेलेबल है. कॉल कीजिए 8138279 आरजे साइड मस्ती मॉर्निंग शो पर.
11: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: देखो, अभी तक हमने सुना था कि होली जैसे फेस्टिवल में जो पुरानी लड़ाइयां हैं ना, उन्हें निपटाकर लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन who knew that कि रक्षाबंधन के इस ओकेजन को भी इसके लिए यूज किया जा सकता है। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आज निबद्ध साइड और बताना चाहूंगी, रिसेंटली बहुत सारी कॉमेंट बाजी जो है ना, वो कंगना रनौत की तरफ से भी हुई और दूसरी तरफ रामदेव बाबा वो एक कमेंट बाजी कर रहे थे और इस चक्कर में एक ना एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। सो रक्षाबंधन के ओकेजन पर रामदेव बाबा जी ने कंगना रनौत के लिए मिठाइयां भिजवाई हैं और उस पर लिखा हुआ था कि विवाद नहीं संवाद होना चाहिए। और ये बात कंगना रनौत के दिल को छू गई और उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि ठीक है भाई, अब हम लोग विवाद नहीं करेंगे एंड ऑल मैटर इज सॉल्व्ड। तो ऐसे मौके आप भी तलाश लिया कीजिए किसी से लड़ाई वड़ाई दूर करने। अच्छा, आप किसी से लड़ाई करते ही नहीं है? क्या बात है, ये होती है ना बात, ये बात होती है। आज मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
4: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
5: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत।
3: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
5: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल।
6: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस।
5: गुड्डू पंडित का बदला।
7: दिल वाले हैं हम, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
5: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु। रिलीजिंग 4th सितंबर आइन एंड वाइट एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क्स सिंगापुर।
0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
8: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
0: रहो। देखो जब हम छोटे थे तो शायद एक विश हमारी रह गई कि यार मैजिक शो देखने जाना है, लेकिन अब हम जब बड़े हुए हैं तो यार मैजिक भी ना एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है। साइकोलॉजिकली आपकी चीजें समझने लगा है, सो व्हाई नॉट गो विद द ट्रेंड एंड गेट एन एंटरटेनमेंट। सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आर जे नुपुर आपके साथ। सो सिंगापुर इस बार अगर आप कुछ माइंडफुली मैजिक देखना चाहते हैं तो इस 20th सितंबर सुहानी शाह, जो कि द वर्ल्ड्स मोस्ट सब्सक्राइब्ड मेंटलिस्ट है, वो सिंगापुर में लाइव आ रही है। अपना वेन्यू जो रहेगा वो है 30A क्रेटा अय्यर रोड सिंगापुर, क्रेटा अय्यर पीपल्स थिएटर में। सो इस 20th सितंबर 6 PM ऑनवर्ड्स इन इंग्लिश डेफिनेटली आप इंजॉयमेंट ढूंढ सकते हैं और फैमिली के साथ इस शो को एंजॉय कर सकते हैं। सो

0: एक चीज 4 से 5 साल पहले सफर की तरह शुरू हुई थी और OTT से लेकर अब उसका सफर बड़े पर्दे पर एज अ मूवी, मतलब 3 hours 17 minutes की कही जा रही है। एंटरटेनमेंट कैटेगरी की ये मूवी आपको सिंगापुर में दिखाई देने वाली है। डेफिनेटली फैन फॉलोइंग बढ़ चुकी है। मिर्जापुर इन द हाउस, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे अनुपुर आपको याद दिलाना चाहेगी, मौका है, दस्तूर है। सो 4th of September को रिलीज हो रही है मिर्जापुर द मूवी। और मजे की बात देखो क्या है, मतलब आपको कालीन भैया की तरह पंकज त्रिपाठी नजर आएंगे, मुन्ना त्रिपाठी नजर आएंगे यानी कि दिव्येंदु नजर आएंगे, श्वेता त्रिपाठी और भी अली फजल गुड्डू भैया की तरह नजर आएंगे, लेकिन नई एंट्री हो चुकी है यार। हाँ जी, मतलब जितेंद्र कुमार नजर आ रहे हैं, रवि किशन, अभिषेक बैनर्जी, हर कोई आपको नजर आने वाला है। सो बहुत कम रीजन है कि आप ये मूवी देखने ना जाएं और बहुत ज्यादा रीजन है कि आप ये मूवी एक्सपेक्ट करें और अपने आप को एंटरटेन करें। डेफिनेटली मिर्जापुर द मूवी 4th of September विच इज ब्रॉट यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर, एंड आपको पहुंचना चाहिए। हाँ, अभी से टिकट बुक करा लो वरना हाथ से चला जाएगा मौका। मैं आरजे अनुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।
1: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
2: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
3: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत,
1: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
3: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल,
4: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भौकाली के प्रिंस।
3: गुड्डू पंडित का बदला,
5: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
3: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु, रिलीजिंग 4th September, आइलैंड वाइड एट द सिनेमाज नियर यू, ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर,
3: पूरा साल निकल जाएगा और आप सोचोगे यार मैंने कोई ऐसी जगह एक्सप्लोर नहीं करी जहां मुझे एन नंबर ऑफ वैरायटी मिल जाती, वो चाहे कपड़ों में, खाने में, होम डेकोर में, गिफ्ट्स में, हैंडीक्राफ्ट्स में, लाइफस्टाइल में और ना जाने क्या क्या। सो चार जगह जाने से अच्छा है एक जगह चले जाओ जहां पे सारा सॉल्यूशन निकल कर आ जाए। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ एंड मैं बात कर रही हूँ माउंट बैटन CCIAEC प्रेजेंट्स फेस्टिव बाजार 2026 एंड ये जो है 27th ऑफ सेप्टेम्बर को होने वाला है 10 AM to 6 PM माउंट बैटन CC मल्टीपर्पज हॉल में। तो देखो एक ही मौका है, एक ही दिन है, तो फुल फ्लेज्ड आप इंजॉय करो। मतलब सिर्फ शॉपिंग, फूड, होम डेकोर, हैंडीक्राफ्ट की या लाइफस्टाइल की ही बात नहीं है, आप यहाँ पे अपने बच्चों को अलग अलग तरह की राइड्स, लकी ड्रॉज और भी एक्साइटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके आप अपनी शॉपिंग इंजॉय कर सकते हो डेफिनेटली। और बड़ी बात यह है कि जो भी छोटे स्टार्टअप्स हैं और वो फेस्टिव एक्टिविटीज में इंडल्ज होके एक प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो आपको पता है बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में स्टॉल की कॉस्टिंग मिल रही है। प्रीमियम टेबल $100 की है, स्टैंडर्ड टेबल $80 की है। सो मुझे लग रहा है कि कोई भी सेकेंड थॉट दिए बिना आपको कॉल करना चाहिए 8330-2518 पे ताकि आप और डिटेल्स जान सके। रजिस्ट्रेशन के लिए go.gov.sg भी आप लॉग ऑन कर सकते हैं। मैं आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
4: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपैट इंडियंस एनीटाइम एनीवेयर।

0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: शोर सुन टकाटक,
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: क्या लगता है आपको रियल सुख क्या है? हाँ, एसी के रूम्स में अंदर एक सी व्यू अपार्टमेंट के साथ, या फिर ग्रीनरी के बीच नेचर के साथ? सोच लो, आपको अपना बेस्ट चूज करना है। क्यों? क्योंकि अब एक्टर्स ने तो सी व्यू अपार्टमेंट के बाद एक और चीज चूज करनी शुरू कर ली है कि भाई खुद का फार्म हाउस होगा, खुद की ग्रीनरी होगी, खुद के प्लांट्स होंगे, खुद की सब्जियां होंगी। आए हाय, ऑर्गेनिक लाइफ जो है ना, हर कोई जीना चाह रहा है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ चुके हैं मनोज वाजपेयी। हाँ जी, मनोज वाजपेयी जो है ना, वो पुणे के, हाँ जी, महाराष्ट्र के पुणे के डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा सा लैंड ले चुके हैं। हाँ जी, 4.45 एकड़ का लैंड इन्होंने बुक कर लिया है, करीबन 1.37 करोड़ का, जिसमें ये ग्रीनरी के साथ रहने वाले हैं। अब आगे के क्या प्लान्स हैं वो तो बाय द टाइम पता चलेंगे, पर हाँ, मुंबई की भीड़ से हर कोई निकलना चाहता है बॉस। आरजे रूपर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर।

0: और सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जो नहीं सोचा था वही सब हो रहा है। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे रूपर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड मतलब अभी तक किसी के डिवोर्सेस, किसी के अफेयर्स, किसी की डेटिंग फेज, किसी की ऐसी वाली बातें जो है ना इतनी नहीं निकल कर आई जितनी इनकी निकल कर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि डे वाइज एक रिपोर्ट बनाई जा रही है सोशल मीडिया पर डालने के लिए। मैं आरजे रूपर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड यस, मैं बात कर रही हूँ किसके बारे में, गोविंदा के बारे में। गोविंदा अभी अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा खफा है, सुनीता आहूजा, जिन्होंने शक होने पर कि उनके पति कहीं दूसरी शादी ना कर लें तो डिवोर्स पेटिशन तक वापस ले ली है। सो गोविंदा जो हैं, जिनके साथ नजर आ रहे हैं वो बार बार, कोमल रानी स्वर्णकार, ये लड़की कौन है, कहां से आई है किसी को नहीं पता, लेकिन ये एज एन एक्ट्रेस इनकी अपकमिंग मूवी में नजर आने वाली है। और इनकी वाइफ फुल ऑन क्लेम कर रही है कि इन दोनों का कुछ चल रहा है, समथिंग लाइक दैट। सो गोविंदा कुछ करोड़ का मान हानि का दावा अपनी वाइफ के ऊपर करने से चूकने वाले नहीं है, ऐसा उन्होंने कह दिया है। बट डोंट यू थिंक कि ये बातें हम तक नहीं आनी चाहिए, मतलब इसके बिना अभी काम चल रहा था, अब तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही हैं। मतलब ये लोग ना हमें पॉइंट्स दे रहे हैं जज करने के लिए कि इन दोनों में से कौन सही है और कौन नहीं। हाँ, आज नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर ये सवाल यही छोड़ती है कि इन दोनों में से कौन सही है और कौन नहीं, क्योंकि इनकी दुनिया में कई बार जो लगता सही है वो होता नहीं। ऑन दिस नोट मी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, सी यू बहुत जल्द। सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: नचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: They are fresh. They are hot.
1: They are happening.
2: From rocking the charts to ruling the countdown. Yeah, Musti Top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters.
3: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
4: आई लव यू रसना,
3: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, Masti 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Masti 24/7 Live.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: कुछ पुरानी धुने, कुछ भूली बिसरी यादें,
2: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
1: कोई आवाज, कोई साज, सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से। नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर, मस्ती पे भक्ति में सुबह 6 बजे।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

ओ तैयब टेल मी हाउ हाउ, तैयब टेल मी हाउ हाउ, ओ लड़की तेरी ताजमहल सी हम करे वाह वाह।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रचना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live. 25.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: हेलो हेलो एंड वेलकम रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ, और यहाँ पर शुरू हो चुका है मस्ती 90s मिक्स टेप। ऑफ कोर्स इस शो का इंतजार तो हम हमेशा ही करते हैं, एक थर्सडे से दूसरा थर्सडे आता है और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। बट कमाल की बात ये है कि इस चैप्टर का, 90s वाले चैप्टर का रिविजन कराने के लिए हम सैटरडे को भी सुबह सुबह 8 बजे बिल्कुल आ जाते हैं। इसका ऑनकोर जो है शनिवार 8 से लेकर 11 बजे तक आता है। बट गिवन द न्यू अमेजिंग कमाल के फीचर्स हमारे मस्ती मीडिया 24/7 जो ऐप है उसमें, एंड द लेटेस्ट वन इज द रिकॉर्ड फीचर। ओहो हो हो, मतलब ऐसा मजा ही आ गया कि मैं आपको क्या ही बताऊं, आंसू आ गए मेरे, इतनी खुश थी मैं जब ये वाला फीचर ऐड हुआ था कि आप कहीं पर भी कुछ भी। यू रिमेंबर, मैं आपको 90s के टाइम पे अगर ले जाना चाहूं तो तब जब बहुत सारी चीजें टीवी की दुनिया में, केबल टीवी और ये सारी चीजें बदल रही थी, बहुत बाद में आई थिंक 2000s में आकर जो है ये टाटा स्काई वगैरह जो आए थे, उन्होंने फिर एकदम एक चीज रिकॉर्ड का फंक्शन किया कि टीवी को बस ऑन रखने की जरूरत थी और उसमें आपने रिकॉर्ड का बटन दबाया और आपका फेवरेट शो आप मिस नहीं करोगे, आप रिकॉर्ड करके रख दोगे और बाद में कभी भी आप उसको अपने तसल्ली से आराम से सुन सकते हो। द सेम थिंग यू कैन डू नाउ हमारे मस्ती मीडिया 24/7 ऐप में भी। आपको अगर 90s का शो सुनना है तो आप बिल्कुल अभी अभी जो है इसको रिकॉर्ड पे लगा दें और इसको रिकॉर्ड होने दें। अगर आपने प्लेयर को पॉज भी कर दिया, ठीक है, इसको प्ले रखने की जरूरत भी नहीं है, बताओ या तो बस वो भी रिकॉर्ड होता रहेगा, बस आपको खुला रखें और जो इंटरनेट है उसको चालू रहने दें, सो एवरीथिंग विल हैपन एंड यू नो। बट एनीवेज, ये सारी चीजें तो मैं धीरे धीरे आपको यूं ही सिखाती रहूंगी क्योंकि आज का जो है मेन हीरो भी जो है सिखाने का ही है। भाई टीचर्स डे आने वाला है इंडिया में, तो मैंने सोचा कि आज की बातें भी कुछ वैसी वाली नहीं होनी चाहिए, अपने टीचर्स की, अपने स्कूल की एंड बॉलीवुड की कुछ 90s की ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी जो मूवीज जो हमने देखी और उन्होंने भी हमें बहुत सारा कुछ सिखाया कि कॉलेज में बेटा से रोमांस करने के लिए जाते हैं कॉलेज और स्कूल की इतनी बातें, इतनी यादें, एंड एवरी सिंगल टाइम इट इज अ न्यू वन जो इमर्ज होके आ जाती है। सो आज का थीम कुछ ऐसा ही रहेगा दोस्तों, है ना। चलिए फिलहाल अपनी गाड़ी को बढ़ाते हैं आगे एंड लेट मी कम बैक विद माय एकदम पहला प्यार है वो नहीं, 90s का गाना नहीं है। स्टे ट्यून्ड।

0: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa. Ganpati bappa!
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
3: जीजी
2: कृषि वाल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
3: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, चीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 पर आप सुन रहे हैं मस्ती 90s मिक्सटेप। भाई टीचर्स डे जो है वो आने वाला है, एंड स्पेशली जब इसका ऑनकोर आएगा इस शो का, तो उस दिन तो टीचर्स डे इंडिया वाला होगा ही होगा। इंडिया वाला, जी हाँ, 5 सितंबर की मैं बात कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि आज तो मतलब बेस्ट मौका है, ऐसी ही बातें करते हैं, टीचर, स्कूल, क्लासरूम, एंड वी लव इट कम्प्लीटली। सो 90s स्कूल का एक रिफ्लेक्स काफी था, राइट, जो मुझे लगता है कि आज भी हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं सेव्ड है। क्लासरूम में ना फुल केओस हो रखा होता है, कोई लास्ट बेंच से बात कर रहा है, कोई किसी की पेंसिल गायब हो रखी है, कोई नोटबुक एक्सचेंज कर रहा है, कोई बिना रीजन के हंस रहा है, एंड सडनली टीचर दरवाजे पर, बस पिन ड्रॉप साइलेंस। पता नहीं किसने कमांड दी, लेकिन पूरी क्लास एक साथ खड़ी हो जाती थी, और फिर क्या आता था, बिल्कुल सुर में, टेक इट फ्रॉम द टॉप, गुड मॉर्निंग मैम। आई मीन आई स्टिल डोंट नो वाई वी यूज टू डू दैट, बट क्या याद है ये भी। अरे हम गुड मॉर्निंग बोल रहे थे या मॉर्निंग को खींच कर लंच तक ले जा रहे थे या मैं भी नहीं पता। तो टीचर बड़े ही आराम से कहते, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, थैंक यू मैम। फिर एक साथ 40 चेयर्स की कर कर खटक खटक धड़ाम धुड़ूम सब कुछ आवाजें आती थी। नाउ दैट साउंड इटसेल्फ वाज सो 90s क्लासरूम का सराउंड साउंड, नहीं? और अगर टीचर का मूड थोड़ा प्लेफुल हो तो गुड मॉर्निंग, इतना डल गुड मॉर्निंग, चलो चलो वापस से बोलो, फिर से गुड मॉर्निंग, पूरा फुल फील में। लेकिन असली कॉमेडी तब जब क्लास का आधा पोर्शन टीचर को कॉरिडोर में आते हुए देख ही नहीं पाया। सो फ्रंट बेंचेस खड़े, बैक बेंचर्स अभी भी बातों में बिजी, फिर वही साइड वाला, ओए ओए मैम आ गए, मैम आ गए, और पीछे से पैनिक में चेयर्स गिरते हुए सब खड़े होते हुए, और टीचर्स डे पर रोल रिवर्सल, सीनियर स्टूडेंट्स टीचर बनकर क्लास में एंटर करते थे। हमारी क्लास में ऐसा हुआ है, और छोटे बच्चे उनको फुल एकदम प्रोटोकॉल देते, गुड मॉर्निंग दीदी। सडनली समझ आता था टीचर बनने का असली पावर ट्रिप क्या है। बट यू नो व्हाट आई लव अबाउट दिस मेमोरी, हर टीचर जो है वो डिफरेंट था। किसी के एंटर करते ही साइलेंस, किसी को देखकर एक्साइटमेंट, किसी पीरियड का वेट, और किसी पीरियड से पहले जेन्युइन प्रेयर कि आज तो ये एब्सेंट हो जाए, नहीं आए तो बेहतर है। लेकिन वो रिचुअल सेम था, टीचर आए, हम खड़े हुए, गुड मॉर्निंग बोला, और अगले 40 मिनट के लिए एक और लिटिल चैप्टर ऑफ चाइल्डहुड शुरू। आज ऑफिसर्स में मीटिंग स्टार्ट होती है, हाय एवरीवन, कैन यू हियर मी, यू आर ऑन म्यूट, ये सब सुनने को मिलता है। लेकिन 90s वालों की ओरिजिनल मीटिंग की ओपनिंग, नो लॉग इन रिक्वायर्ड माई डियर फ्रेंड्स, बस टीचर दरवाजे से एंटर करे मॉनिटर लंग्स फुल कैपेसिटी पर, और 40 बच्चे एक साथ क्या, गुड मॉर्निंग, ओह यस, गुड मॉर्निंग पीपल, मस्ती 90s मिक्सटेप, स्टे ट्यून्ड।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa.
3: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
4: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
2: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत।
3: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
2: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल।
5: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस।
2: गुड्डू पंडित का बदला।
6: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
2: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु, रिलीजिंग 4th September, आइलैंड वाइड एट द सिनेमाज नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।

से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। चलिए चलिए अपने हिप हिप हुर्रे वाली गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। भाई टीचर्स डे इंडिया में आने वाला है एंड आई थॉट दैट परफेक्ट टाइमिंग है, मतलब 90s और स्कूल और कॉलेज और टीचर्स एंड स्टूडेंट्स की बात, जब ये सबकी बात हो तो मैं उस टाइम पे आपको ले जाना चाहती हूँ जिस टाइम ने मेरा दिल ले लिया, जब आता था ये शो टीवी पे हिप हिप हुर्रे, आज कल अपना कोई माने या न माने अपने आप। देख रहे हो, याद है कैसे मुझे एक एक चीज, बिकॉज आई यूज टू लव लव राफे पे, तो मेरा ऐसा क्रश था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। राफे वॉज वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन दिस ऑफकोर्स हिप हिप हुर्रे वाला सीरियल। सो वेल, ये जो है 1998 में, हाँ ये एक ऐसा स्कूल आ गया डिनोबली हाई स्कूल, बड़ा ही हिप नेम राइट। और मुझे हिप हुर्रे की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या लगती है, ये वो वक्त था जब बॉलीवुड हमें कॉलेज का एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन दिखा रहा था कि बड़े बड़े कैंपसेस, डिजाइनर क्लोथ्स, बास्केटबॉल कोर्ट्स, डांस कॉम्पिटिशंस एंड स्टूडेंट्स जिनके टाइम टेबल में अपेरेंटली पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रखा है, और दूसरी तरफ था ये हिप हिप हुर्रे। यहाँ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स जैसे लग रहे थे, क्लासरूम थे, देन टीचर्स थे, फ्रेंड के ग्रुप्स थे, क्रशेस थे, आर्ग्यूमेंट्स थे, एग्जाम्स और करियर का टेंशन था, पेरेंट्स के साथ इश्यूज थे, पीयर प्रेशर था, इनसिक्योरिटी था, फ्रेंडशिप था, देयर वाज सो मच दैट वी कुड रिलेट टू। मतलब देखते हुए कभी कभी लगता था कि अरे ये तो हमारे स्कूल में भी होता है, ये तो मेरे साथ भी होता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट मेड इट सो स्पेशल। शो 12th ग्रेड के स्टूडेंट्स की जिंदगी फॉलो करता था उस वक्त, और इंटरेस्टिंगली इट टैकल थिंग्स लाइक करियर्स, रिलेशनशिप्स, पीयर प्रेशर, हेल्थ, इवन ड्रग्स। प्रीटी अनयूजुअल टेरिटरी फॉर इंडियन टीन टेलीविजन 90s के टाइम पे। Well, the show was created and directed by Nupur Hastana and much of its young cast actually us time pe sab newcomers the. Unhi faces mein Purab Kohli, Vishal Malhotra, P.R. Rai Chaudhary, Rushad Rana, names jo baad mein humne entertainment ki duniya mein aur bhi jagah par dekhe. Aur teachers bhi, bhai Vinay Pathak as Vinnie sir, remember? Suchitra Pillai, then Sanjay Mishra bhi show ka part rahe hain. Imagine that 90s ka classroom, even the title track, oh my god, jaisa ki maine आपको बताया के की आवाज थी, साथ में हेमा सरदेसाई की जो है आवाज थी इस गाने में। दैट इज प्रॉपर नॉस्टैल्जिया, दैट इज प्रॉपर 90s आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड इसीलिए हिप हिप हुर्रे स्टिल हिट्स डिफरेंटली। इट वाज नॉट टेलिंग टीनेजर्स योर लाइफ शुड लुक कूलर, इट वाज ऑलमोस्ट सेइंग योर कंफ्यूजिंग लिटिल टीनेज लाइफ इज इंटरेस्टिंग इनफ टू बी अ स्टोरी। और 90s में जब आप खुद स्कूल में हो और टेलीविजन पर कोई आपकी एज के बच्चों की प्रॉब्लम्स को सीरियसली दिखा रहा हो तो बस उसको सीरियसली ले लेना चाहिए, दैट मैटर्ड। बॉलीवुड ने हमें ड्रीम कैंपसेस दिए लेकिन हिप हिप हुर्रे ने कहीं ना कहीं हमारा अपना क्लासरूम स्क्रीन पर दिखा दिया। और बताइए डिनोबली हाई स्कूल याद आया? आप ऑफिशियली मेरे 90s अटेंडेंस रजिस्टर में प्रेजेंट लगाए जाते हो। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7 चल रहा है मस्ती 90s मिक्सटेप।

पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। यह मस्ती 90s मिक्स टेप ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मैं अंतरा आपके साथ 90s वाली। और भाई 90s के स्कूल क्लासेस और न जाने कहां कहां आज घूम के आएंगे, बट जो होगा सबसे अच्छा ही होगा। सो वेल 90s के स्कूल वालों, आजकल के रेड फ्लैग को सुनते ही क्या याद आता है? रिलेशनशिप्स, डेटिंग, टॉक्सिक बिहेवियर। भाई 90s के बचपन में रेड फ्लैग का असली एड्रेस था स्कूल की किताब और मेरे लिए स्कूल की डायरी। आपने होमवर्क किया, पूरे कॉन्फिडेंस से नोटबुक भी सबमिट की और नेक्स्ट डे नोटबुक वापस आई तो पहले कवर नहीं, अंदर के पेजेस का कलर चेक होता था, एक बड़ा सा रेड टिक। चलो सुकून, दो टिक्स। आज तो घर जाके नोटबुक कैजुअली टेबल पर खुली छोड़ सकते हैं, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आता था कि चलो सब सही है, मम्मी नोटिस कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर आते थे वो डेंजरस रेड पेन के मैसेजेस, रीडू, दिस इज रॉन्ग। बस एक ये कुछ वर्ड्स लिख देते थे एंड सडनली पूरा पेज दोबारा लिखना पड़ता था, या इनकम्प्लीट, एंड या वो अंडरलाइन जिसके नीचे टीचर ने तीन बार रेड लाइन खींच दी होती है, मतलब आंसर सब गलत नहीं है, टीचर पर्सनली डिसअपॉइंटेड है। लेकिन सबसे टेरिफाइंग, सी मी। फिर तो बेटा सी मी क्यों, क्या डिस्कस करना है, यही लिख दो ना मैम, क्या करोगे इसका। अब नेक्स्ट पीरियड तक दिमाग में 10,000 पॉसिबिलिटीज, होमवर्क के लिए, हैंडराइटिंग के लिए, आंसर गलत हो गया, पेरेंट्स को बुलाएगी क्या, स्कूल लेवल एंजाइटी, बाप रे बाप। और मेरा फेवरेट था वो रेड क्वेश्चन मार्क। आपने तीन लाइन का आंसर लिखा है, आपको खुद लग रहा था कि क्या आंसर लिख दिया बॉस, टीचर ने साइड में बस एक क्वेश्चन मार्क, उन्होंने भी यही पूछा, मतलब मैम भी कंफ्यूज्ड है, हम भी कंफ्यूज्ड है, आंसर भी कंफ्यूज्ड है। और कभी नोटबुक के एंड में अगर मिल जाए गुड लिखा हुआ या वेरी गुड, अरे उस दिन वो रेड पेन विलन से हीरो बन जाया करता था। वो नोटबुक घर जाती थी, मम्मी को वॉलंटरीली दिखाई जाती थी कि देखो टीचर ने वेरी गुड लिखा है। नाउ द फनी थिंग इज, आज डॉक्यूमेंट्स ऑटो करेक्ट होते हैं, राइट, ट्रैक कर सकते हैं चेंजेस को, स्पेल चेक है, डिजिटल कमेंट्स है, लेकिन टीचर के रेड पेन की अथॉरिटी, ओ माय गॉड, अनमैचेबल। एक छोटा सा टिक कॉन्फिडेंस बढ़ा देता था, एक सर्कल बता देता था कि कहां गलती हुई है, और एक सीमी पूरा दिन खराब कर सकता था। और हाँ, टीचर की हैंडराइटिंग समझ ना आए तो पूरा फ्रेंड सर्कल जो

इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है कि ये तो रीडू लिखा हुआ है. नहीं नहीं नहीं, रीड लिखा हुआ है. अरे किसी टॉपर को दिखाओ यार कि क्या लिखा हुआ है. 90 स्कूल की नोटबुक सिर्फ नोट्स नहीं संभालती थी दोस्त, उनमें टीचर्स की करेक्शंस, हमारी मिस्टेक्स, लिटिल स्टार्स, रेड टिक्स और वो ओकेशनल एक्सीलेंट भी संभाल कर रखा होता था. सो यस, हम 90s वालों ने रेड फ्लैग्स बहुत पहले देख लिए थे बॉस, बस तब उनसे रिलेशनशिप नहीं होमवर्क खराब होता था. स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: I love you, रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिम्का, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live. 75.

0: कसल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ओ हो हो, ऐसा मतलब टैटू हो गया था कि ओ ऐसे। लेकिन फिर भी उस कॉलेज में रोमांस करने में कोई पीछे नहीं हट रहा है। शाहरुख खान ही कह रहा है कि नहीं, तुम जाके रोमांस करो। रेडियो बस्ती 24/7, भाई यही तो वो हमारे टीचर्स हैं जहाँ से हमने सीखा था। हमारे जो इमेजिनरी दुनिया है, इन्हीं सब की देन है। वेल, मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो और यहाँ पर जो है मैं 90s वाली अंतरा, एंड स्कूल और टीचर्स की बात हो रही है। तो एक ऐसे प्रिंसिपल जिनको अटेंडेंस इस शो में तो देनी ही पड़ेगी, और वो बस यही बोलते थे कि परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। और मुझे लगता है वो पूरी जनरेशन ऑटोमेटिकली सीधी ही बैठ गई थी। नारायण शंकर की मैं बात कर रही हूँ। मोहब्बतें का गुरुकुल याद है आपको? वो ह्यूज गेट्स, वो नेवर एंडिंग ड्राइववे, वो मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, और अमिताभ बच्चन जी वॉकिंग अराउंड एज इफ किसी स्टूडेंट ने कॉरिडोर में जरा जोर से हंस दिया तो फैमिली को ट्रांसफर सर्टिफिकेट कोरियर हो जाएगा। एंड हियर समथिंग आई फाइंड रियली फैसिनेटिंग, अगर मोहब्बतें देखकर कभी लगा हो कि यार इंडिया में ये गुरुकुल है कहाँ, है ना, ये ऐसे फैंसी लग रहा है, जाना तो मतलब इच्छा तो है बट नॉट विद नारायण शंकर। सो आंसर है कहीं भी नहीं है, बिकॉज गुरुकुल वॉज फिक्शनल लाइक ट्रूली, और जो मैग्निफिसेंट एक्सटीरियर जो है हमने स्क्रीन पर देखा था, दैट वॉज एक्चुअली लॉन्गलेट हाउस इन इंग्लैंड, एक हिस्टोरिक इंग्लिश एस्टेट, एंड द स्टोरी बिहाइंड चूजिंग इट इज इवन बेटर। सो फिल्म मेकर्स जो है हैड अ वेरी पर्टिकुलर पिक्चर ऑफ गुरुकुल अपने दिमाग में, एक इम्पोजिंग सा बिल्डिंग, आइसोलेटेड सराउंडिंग्स, अ ग्रैंड एंट्रेंस, रेलिंग्स होनी चाहिए, इवन स्पेसेस फॉर थिंग्स लाइक अ स्मॉल टेम्पल एंड एवरीथिंग। सो दे रिपोर्टेडली लुक्ड फॉर अ सूटेबल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया बट कुडंट फाइंड वन जो कि उनके विजन से मैच कर पाए, देन दे फाउंड इट इन इंग्लैंड। और सिनेमा का मैजिक देखिए, इंग्लिश स्टेटली होम को प्रोडक्शन डिजाइन ने ट्रांसफॉर्म करके हमारे दिमाग में परमानेंटली गुरुकुल बना दिया। इनफैक्ट द इंटीरियर्स जो है देवर नॉट सिंपली उधर के ही जो है, बट मैनी गुरुकुल इंटीरियर्स एंड नेबरिंग एरियाज वर क्रिएटेड ऑन दिस इलेबोरेट सेट इन अलीबाग महाराष्ट्र, वाइल सम वो जो कोर्ट यार्ड के सीन्स है देवर फिल्म्ड इन द क्वींस कॉलेज ऑक्सफर्ड। मतलब जो एक सीमलेस कॉलेज हम स्क्रीन पर देख रहे थे वो एक्चुअली डिफरेंट प्लेसेस को जोड़कर क्रिएट की गई दुनिया थी। एंड बॉस मोहब्बते के बाद स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स का स्टैंडर्ड भी तो चेंज हो गया था। प्रिंसिपल सीरियस हो तो नारायण शंकर, प्रिंसिपल डिसिप्लिन की स्पीच दे नारायण शंकर, प्रिंसिपल कॉरिडोर में हैंड्स बिहाइंड हिज बैक लेकर वॉक करे, बस वायलिन लेकर शाहरुख खान को बुला ही लो अब तो। ऑल्दो टेक्निकली मोहब्बते रिलीज इन 2000, इट्स प्रिंसिपल फोटोग्राफी बिगैन अक्टूबर 1999 में, सो इसका एक पैर हमने 90s में डेफिनेटली देखा हुआ है, एंड मे बी दैट्स व्हाई इट फिट्स टुडेज स्कूल का एडिशन सो ब्यूटीफुली। हमारे एक्चुअल स्कूल शायद गुरुकुल जैसे ग्रैंड नहीं थे, हमारे प्रिंसिपल बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ कॉरिडोर में नहीं घूमा करते थे, बट एवरी स्कूल हैड रूल्स, एवरी स्कूल हैड दैट वन टीचर यू वुडंट डेयर टू टॉक इन फ्रंट ऑफ, और हर जनरेशन में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते थे जो रूल्स सुन के सोचते थे कि हाँ हाँ अरे देख लेंगे देख लेंगे। बस हमारे स्कूल में राज आर्यन वायलिन लेकर नहीं आया, कभी नहीं आया। मैं आपकी 90s वाली अंतरा मस्ती 90s मिक्स टेप में, स्कूल की बेल अभी बहुत बार बजने वाली है, आप तो बने रहो हमारे साथ।

0: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
1: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
2: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत।
0: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
2: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल।
3: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस।
2: गुड्डू पंडित का बदला।
4: दिल वाले हैं हम, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
2: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु। रिलीजिंग 4th सितंबर आइन एंड वाइट एट द सिनेमाज नियर यू। ब्रॉट यू बाय विजन डिस्क्स सिंगापुर। Aamir Khan wondered.
5: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
2: Salman Khan wanted answers.
6: कैसे किया ये?
2: R. Madhavan said.
7: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
2: And Boman Irani?
8: I say this with great respect. This is actually blown my mind.
2: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
9: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhan.
2: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
10: How do you know these things? Stop reading my mind!

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day.
1: अच्छा, स्कूल में एक रोज की एक्टिविटी होती थी जिसमें आंसर हमें ऑलरेडी पता होता था, फिर भी हम अपनी टर्न आने का वेट करते थे। क्या था वो? मस्ती 90s मिक्स टेप। जी हाँ, आप सुन रहे हो 90s वाली अंतरा के साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7। भाई, इंडिया में 5th सितंबर को मनाया जाता है इंडिया वाला टीचर्स डे, तो मैंने सोचा कि आज तो कुछ माहौल ऐसा ही बना दिया जाए 90s वाला, स्कूल एंड कॉलेज एंड पढ़ाई। आई थिंक उस बारे में तो बहुत ज्यादा सीरियसली हमने तभी भी बात की थी, बट यहाँ पर मैं जो बात कर रही हूँ, अटेंडेंस। नाउ टीचर रजिस्टर खोलती, क्लास थोड़ी सेटल होती और शुरू होता रोल नंबर 1, प्रेजेंट मैम 2, प्रेजेंट मैम 3। अगर आपका रोल नंबर, फॉर एग्जांपल, मेरा तो पहले में आता था, मेरा तो नाम ही अंतरा है, तो आप तो जानते ही हो कि क्या ए में है ना। अगर आपका रोल नंबर पीछे की तरफ है, तो 27 है, तो इनिशियली तो जीरो इंटरेस्ट रहता है, आप पेंसिल शार्पन कर रहे हो, फ्रेंड से बात कर रहे हो, डेस्क के अंदर कुछ ढूंढ रहे हो, लेकिन जैसे ही 23 पे आता है बॉस, आपका बॉडी का सिस्टम ऑटोमेटिकली अलर्ट पे चला जाता था। नहीं, याद करो, 24, 25 अब कॉन्वर्सेशन बंद हो गई है, ठीक है, 26 अपनी बॉडी वॉडी स्ट्रेट कर ली आपने, और फिर 27 मतलब आपको इंतजार रहता था, जबकि आपको पता है ये तो होना ही है। प्रेजेंट मैम इतनी कन्विक्शन से बोलते थे जैसे कोर्ट में अपनी प्रेजेंस ऑफिशियली रजिस्टर करा रहे हैं हम, और कभी अटेंशन भटक गया तो टीचर 27 साइलेंस, रोल नंबर 27, फिर साइड में आपका जो डेस्क पार्टनर वो एक आपको कोनी मारता, अरे अबे तो है, यस मैम मैम मैम प्रेजेंट मैम, एंड टीचर का लुक, वेयर वर यू मैम, फिजिकली तो यही था, मेंटली रिसेस तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अटेंडेंस का असली एडवेंचर तब होता था जब बेस्ट फ्रेंड आपके एब्सेंट हो। प्रॉक्सी टीचर बोली नंबर 31 साइलेंस, और आपके अंदर का लॉयल दोस्त धीरे से बोल दो क्या, प्रेजेंट बोल दो क्या, क्या ही समझ में आएगा इतने 40-50 बच्चों में, फिर इमीडिएटली कॉमन सेंस भी बिल्कुल हिट करता था कि टीचर को इसकी आवाज पता है। और अगर क्लास में किसी महान इंसान ने ऐसा करेज करके प्रॉक्सी लगा भी दिया कि प्रेजेंट मैम, टीचर रजिस्टर से नजर ऊपर उठाती, एक सेकंड क्लास को स्कैन करती, रियली बस भाई, केस वहीं पे क्लोज, और वो अटेंडेंस रजिस्टर इटसेल्फ, थिक सा रजिस्टर, टीचर के डेस्क पर परमानेंट अथॉरिटी के साथ पड़ा हुआ, पी फॉर प्रेजेंट, ए फॉर एब्सेंट, और हमारे लिए एक टाइनी लेटर का मतलब बहुत बड़ा था, बिकॉज ज्यादा ए हो गए तो घर तक न्यूज पहुंच सकती थी, और रिमेंबर द लेट कमर्स, अटेंडेंस ऑलमोस्ट खत्म, डोर पर एक नर्वस सी शक्ल, मे आई कम इन मैम, टीचर वाई आर यू लेट, और 90s के स्कूल के बच्चे जो है उनके पास रीजंस का भी पूरा सिलेबस था, बस लेट थी, ट्रैफिक था, साइकिल की चेन उतर गई, अलार्म नहीं बचा, और सबसे ज्यादा मैम एक्चुअली के बाद स्टोरी जो है दिमाग में लाइव क्रिएट हो रही होती थी कि यार क्या ही बोले, आज हम स्वाइप इन कर देते हैं, QR स्कैन जो है वो सब करते हैं, एप्स अटेंडेंस जो है वो मार्क करती है, बट हमारी जनरेशन के लिए अटेंडेंस टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल थी, एक रजिस्टर, एक टीचर, एक रोल नंबर, एक आवाज, प्रेजेंट मैम, है ना। तब हम सिर्फ क्लास में प्रेजेंट मार्क होना चाहते थे, आज वो रोल नंबर्स, वो रजिस्टर, वो क्लासरूम कहीं पीछे रह गए हैं, लेकिन उन्हें याद करो तो लगता है कि हम वहां अभी भी थोड़े से प्रेजेंट हैं, नहीं। रेडियो मस्ती 24/7 पर बिल्कुल ये सिलसिला चलता रहेगा, ऑन मस्ती 90s मिक्सटेप।

0: कसल से कसत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: आप सुन रहे हैं मस्ती 90s मिक्स टेप ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मैं अंतरा आपके साथ, और यहाँ पर जो है टीचर क्लास कॉलेज रोमांस एंड बहुत सारी चीजों की बात हो रही है। सो 90s में अगर आपने कॉलेज अटेंड करने से पहले बॉलीवुड में कॉलेज अगर देखा हो तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी गलत नहीं सेट हो गई थी? आई तो ऑलवेज से दैट, बिकॉज हिंदी फिल्म के हिसाब से कॉलेज में तीन मेन सब्जेक्ट्स थे, म्यूजिक, डांस और रोमांस। पढ़ाई वो इलेक्टिव थी शायद। कॉलेज एंटर करो तो कहीं कंपटीशन चल रहा है, कहीं स्पोर्ट्स राइवलरी चल रही है, कहीं ऑडिटोरियम में रिहर्सल चल रहा है, कहीं एनुअल फेस्ट चल रहा है, और कोई ना कोई गिटार लेकर कैंपस में डेफिनेटली घूम रहा है। देन केम कुछ कुछ होता है इन 1998, ओके, और कॉलेज लाइफ सडनली गॉट अ कंप्लीट मेकओवर। कूल से स्वेटशर्ट्स, फ्रेंडशिप बैंड्स, बास्केटबॉल, मिस ब्रिगेंसा, हाँ, राहुल, अंजलि, इनकी नोकझोंक, और एक प्रिंसिपल जो स्टूडेंट से ज्यादा खुद कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा था, हमारे अनुपम खगेर जी। ओ माय गॉड, हम स्क्रीन देखकर सोचते थे यार कॉलेज में बास्केटबॉल कोर्ट भी होता है? हमारे यहाँ तो एडमिशन के साथ पहला सवाल था अटेंडेंस कितनी कंपलसरी है। बट हियर इज अ फैबुलस स्टोरी बिहाइंड द बास्केटबॉल, ओके। इयर्स लेटर करण जौहर जो है उनसे पूछा गया, इंडिया क्रिकेट ऑब्सेस्ड कंट्री है तो कुछ कुछ होता है में बास्केटबॉल क्यों दिखाया? एंड करण जौहर जो है बेसिकली सेड ही वॉन्टेड अ स्पोर्ट वेयर राहुल एंड अंजलि कुड प्ले क्लोज टू ईच अदर, समथिंग visually interactive and romantic. Basketball fits the scene. And here's the funny part. Karan jo hai, unhone admit kiya, he knew practically nothing about basketball. Shoot Mauritius mein ho raha tha aur apparently Karan kept saying ki गोल एंड गोल हो गया, गोल शूट करो, अंटिल शाहरुख खान फाइनली पुल्ड हिम असाइड, उसको बोला करण बास्केटबॉल में गोल नहीं होता है, बास्केट होता है। इमेजिन, बताओ। द मैन क्रिएटिंग वन ऑफ हिंदी सिनेमाज मोस्ट रिमेम्बर्ड बास्केटबॉल रोमांसेस वाज साइमल्टेनियसली गेटिंग अ बास्केटबॉल लेसन शाहरुख खान से। एंड यस, दोस कॉलेज एक्सटीरियर्स वर नॉट इवन इंडियन कॉलेज का कैंपस, यू न्यू दैट राइट? सेंट जेवियर्स के एक्सटीरियर पोर्शंस वर फिल्म्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, अदर कॉलेजेस के जो पोर्शंस थे वर क्रिएटेड इन मुंबई के स्टूडियोज, एंड दैट्स द मैजिक ऑफ 90s बॉलीवुड। रियलिटी में हम लेक्चर के बाद कैंटीन पहुंचने में खुश थे, सिनेमा में कॉलेज मेंट कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स, सॉन्ग्स, दोस्ती, दुश्मनी, प्यार, और सेमेस्टर कब खत्म हो गया किसी को पता ही नहीं चला। बट एडमिट तो कर लो आप, 90s बॉलीवुड ने कॉलेज लाइफ रियलिस्टिक भले ही ना दिखाई हो, एक्साइटिंग बहुत बना दी थी। और हम में से कितने लोग स्कूल बैठकर सीक्रेटली वेट कर रहे थे कि यार बस कॉलेज पहुंचने दो, हमें अपनी फिल्म हम वहीं से शुरू करेंगे। रेडियो मस्ती 24/7 पर, जी हाँ, बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ, यह मस्ती 90s मिक्सटेप।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
4: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
5: वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 अंतर आपके साथ और यहाँ पे चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई, टीचर्स डे के आसपास स्कूल में एक अनाउंसमेंट होती थी कि मतलब जिसको सुनकर ना सडनली सीनियर स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी में बड़ा चेंज आ जाया करता था। चलिए याद दिलाती हूँ मैं आपको, बिकॉज 5th सितंबर का कोई स्कूल, कुछ स्कूल्स में कई सारे इनफैक्ट एक ट्रेडिशन हुआ करता था कि सीनियर स्टूडेंट्स वुड बिकम टीचर्स फॉर द डे। और बॉस, इसके लिए प्रिपरेशन बढ़ाने की कम और लुक की ज्यादा होती थी। सो गर्ल्स के लिए कि यार तू साड़ी पहन रही है, मम्मी की कौन सी वाली, सेफ्टी पिन्स जो है एक्स्ट्रा रख लेना। और सुबह घर में मम्मी जो है एक टीनेजर को साड़ी पहना रही होती है, प्लीज संभाली नहीं जा रही है, पल्लू कहीं और जा रहा है, मम्मी की वार्निंग्स आ रही है कि भाई स्कूल तक पहन कर पहुंच जाओगी कि खुल जाएगा। एंड द बॉयज सडनली शर्ट प्रॉपरली टक्ड इन, फॉर्मल ट्राउजर्स, कभी टाई, बालों में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लिया, हाथ में एक रजिस्टर या नोटबुक, बस। कल तक जो बंदा कॉरिडोर में पनिशमेंट अवॉइड कर रहा था, आज उसकी चाल देख लो, है ना। टीचर्स डे वाले दिन स्टाफ रूम से आ रहे शर्मा सर। देन केम द रियल टेस्ट। क्लास में एंट्री होती थी गुड मॉर्निंग क्लास, और सामने होते थे छोटे छोटे वाले बच्चे जिनको ऑलरेडी पता है कि ये असली टीचर नहीं है, इसको परेशान कर सकते हैं। भैया आज पढ़ाई मत कराओ ना, दीदी फ्री पीरियड, दीदी स्टोरी सुनाओ, दीदी अंताक्षरी खेलेंगे। और 5 मिनट्स के बाद न्यूली अपॉइंटेड टीचर, एवरीबॉडी कीप क्वाइट। अरे वाह, अभी तो आए हो, 10 मिनट और लास्ट बेंच, स्टॉप टॉकिंग। कैसा मजा आता था ना डिसिप्लिन करने में, खुद की डिसिप्लिन की डायरी जो है वो क्या ही बताए। बट बच्चों को छोड़ ऐसे ना, नो यू डोंट, आई विल राइट योर नेम, दिस दैट एंड समवेयर इन द स्टाफ रूम एक्चुअल टीचर्स दे मस्ट हैव बीन थिंकिंग, अब समझे बेटा हमें।

परफॉर्मेंसेस करते, बट मे बी ये ट्रेडिशन एक और गिफ्ट क्वाइटली दे जाता, पर्सपेक्टिव नहीं। एक दिन टीचर के चेयर पे बैठकर पता चलता था बोर्ड पर लिखना तो इजी है, क्लास को साथ लेकर चलना, दैट्स द रियल लेसन। एंड यस, 90s के टीचर्स डे की वो मम्मी की साड़ी पहनकर टीचर बनी दीदी, अगर आज भी अपनी फोटो अगर देखे जाकर, फर्स्ट रिएक्शन लेसन प्लान पर नहीं होगा कि हाय मैंने ये हेयर स्टाइल क्यों बनाया था, मतलब ना ही देखू तो मैं बेटर हूँ। रेडियो मस्ती 24/7 पर, जी हाँ, वो चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये सिलसिला तो थोड़ी देर और जारी रहेगा।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live.

आइए आइए, आपका स्वागत करती हुई मैं ऑन रेडियो मस्ती 24/7 मस्ती 90s मिक्स टेप में। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं आगे। भाई क्या हुआ कि ये 5th सितंबर यानी कि इंडिया का टीचर्स डे का जो है समासा बंध गया, तो मैंने कहा कि आज तो 90s मिक्स टेप का भी समा कुछ ऐसा ही बांध देते हैं। सो 90s में कुछ फिल्म्स हम देखते नहीं थे, उनकी दुनिया में एडमिशन लेना चाहते थे। 1998 में कुछ कुछ होता देखने के बाद मुझे पक्का लगता था, बहुत सारे स्कूल गोइंग किड्स ने ऐसे सोचा होगा, बस कॉलेज जाना है तो सेंट जेवियर्स वाला ही जाना है। बिकॉज बॉस क्या कॉलेज था, क्या बास्केटबॉल कोर्ट थे, मैं तो बता ही रही थी ना इसके बारे में। फ्रेंडशिप बैंड्स एंड वो कूल वाला COOL कूल वाला चेन आपको याद है, एंड आई लव द ओवरसाइज्ड स्वेटशर्ट्स, आई स्टिल लव देम। सो अंजलि का हेडबैंड लगाकर जो है इधर उधर घूमना, राहुल की वो कूल नेकलेस, टीना की मिनी स्कर्ट में गिटार लेके आना, एंड प्रिंसिपल मल्होत्रा को एकेडमिक्स से ज्यादा मिस ब्रिगेंजा में इंटरेस्ट होना। पढ़ाई कब होती थी पता नहीं, लेकिन फैशन अटेंडेंस 100% थी। और कुछ कुछ होता है रियली डिड इन्फ्लुएंस हाउ द एंटायर जनरेशन इमेजिन्ड कूल। दोस हेयर बैंड्स, फ्रेंडशिप बैंड्स, कूल चेन्स बिकेम इंस्टेंटली काइंड ऑफ यूथ एक्सेसरीज, ट्रेंड कर गया ट्रेंड। बट अब आता है ट्विस्ट। अगर आपने ये सोचा था कि वो गॉर्जियस सेंट जेवियर्स कैंपस इंडिया में कहां है, तो एडमिशन फॉर्म के साथ पासपोर्ट भी रेडी रखिए, क्योंकि द कॉलेज एक्सटीरियर्स वर रिमेंबर अ शॉर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस। सो टेक्निकली राहुल और अंजलि की वो ड्रीमी कॉलेज लाइफ देखकर हम इंडिया में कॉलेज सर्च कर रहे थे और कॉलेज मॉरिशस में निकला। बट लोकेशन के साथ साथ जो है कुछ कुछ होता ने एक और चीज को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया, कॉलेज का फैशन। मनीष मल्होत्रा यस डिजाइन द फिल्म का कॉस्ट्यूम्स एंड दैट स्पोर्टी स्टाइलिंग बिकेम ह्यूज पार्ट ऑफ अंजलि एंड राहुल की आइडेंटिटी। काजोल का अंजलि बनना इन दैट पर्टिकुलर मेड लोगो के टी शर्ट्स, वर्सिटी स्टाइल के स्वेटशर्ट्स एंड दैट फेमस हेडबैंड पार्ट ऑफ द फिल्म वॉज लाइक द डिफाइनिंग मोमेंट्स। एंड थिंक अबाउट हाउ डिफरेंट दैट फेल्ट इन 1998, यू नो, बैगी ट्राउजर्स, चंकी स्नीकर्स, नेक चेन, शॉर्ट हेयर। सडनली कॉलेज फैशन मेंट कंफर्ट भी कूल हो सकता है। और फिल्म में ब्रांड्स भी स्क्रीन पर ओपनली विजिबल थे, DKNY, पोलो, राल्फ लॉरेन जैसे लेबल्स, दे बिकेम पार्ट ऑफ दैट एस्पिरेशनल विजुअल लैंग्वेज। हमें से कितनों ने उसके बाद हेडबैंड ट्राई किया होगा, ऑफकोर्स अ लॉट ऑफ पीपल। फ्रेंडशिप बैंड तो डेफिनेटली, और वो कूल वाली चेन मेरे पास भी थी, मैंने भी ली थी, उसका डुप्लीकेट हर दूसरी मार्केट में मिल रहा था। दैट्स व्हाट 90s हिंदी सिनेमा कुड डू। आप फ्राइडे को फिल्म देखकर निकले नहीं और मंडे तक हेयर स्टाइल चेंज, वार्डरोब चेंज, कॉलेज के एक्सपेक्टेशंस चेंज। रियलिटी में अपने कॉलेज पहुंचे तो ना मॉरिशस, ना डिजाइनर वेयर, ना बैकग्राउंड में जतिन ललित का म्यूजिक, बस नोटिस बोर्ड पर 75% अटेंडेंस कंपल्सरी नजर आया। लेकिन कुछ कुछ होता है ना, ये जनरेशन को कॉलेज का जो कलरफुल स्पोर्टी रिडिकुलसली कूल वर्जन दिया ना, रियल हो या ना हो, 90s के इमेजिनेशन में सेंट जेवियर्स का एडमिशन हम सब ने थोड़ा बहुत तो ले ही लिया था। क्या कहते हो, मैं तो सही ही कहती हूँ। स्टे ट्यून्ड।

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: आइए आइए जी हाँ, क्लासरूम में आपका स्वागत है। मस्ती 90s मिक्स टेप की ये है कक्षा। कक्षा, ये नाम सुने हुए कितना टाइम हो गया। रेडियो मस्ती 24/7 पर मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ। जी हाँ, टीचर जो है ने पेन मांगा और सडनली सबके हाथ खड़े हो गए। एक अलग ही मजा आता था यार। मैं स्कूल में अगर टीचर 90s में पूछ लेता था कि डज एनीवन हैव एक्स्ट्रा पेन, तो टेक्निकली आंसर एक बच्चे को देना चाहिए था, राइट? लेकिन 90s के क्लासरूम में 20-30 हाथ एक साथ सबके खड़े हो जाते थे। जिनके पास पेन नहीं है वो भी कि मैम मेरे पास है, मैम मैम टेक माइन, मैम ब्लू चाहिए, मेरे पास ब्लू है। अरे भाई, टीचर को पेन चाहिए, किडनी डोनर नहीं चाहिए। और अगर वो आपकी फेवरेट टीचर हो तो बॉस कंपटीशन ना बहुत अलग लेवल का हो जाता था। टीचर ने आपका पेन चूज कर लिया, ओके अंतरा गिव मी योर्स, बस भाई ओलंपिक सिलेक्शन हो गया हो। आपकी ऐसी टशन वाली वाइब आती थी ना। आप पेन हैंडओवर भी कैसे करते थे फुल डिग्निटी के साथ, एंड देन टीचर स्टार्ट्स यूजिंग इट और आप क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें इंटरेस्ट जीरो। आपकी नजर सिर्फ पेन पर। मैम बोर्ड के पास गई, पेन डेस्क पर रखा। आपके दिमाग में मैम प्लीज याद रखना वो मेरा है। फिर बेल बज गई, टीचर रजिस्टर उठाती हैं, बुक्स उठाती हैं और पेन भी लेकर डोर की तरफ। ओ नो, अब लाइफ का टफेस्ट डिसीजन, टीचर को रोके या एक पेन सैक्रिफाइस कर दे। फिर आवाज, मैम मैम। टीचर टर्न्स, यस, सडनली कॉन्फिडेंस, मैम माय पेन, ओ यस, सॉरी उफ, प्रॉपर्टी रिकवर्ड। चौक के साथ भी कुछ ऐसा नहीं, एक्चुअली थोड़ा अलग सा सीन था। टीचर जब कहती थी कि somebody get me chalk from staff room, what? बॉस, ये कोई errand run करने वाला चीज नहीं था, official assignment था। क्लास से परमिशन के साथ बाहर निकलना, कॉरिडोर में वॉक करना, दूसरी क्लासेस के सामने से निकल के जाना स्टाफ रूम तक, चौक लेकर वापस आना। फॉर दोज 4 मिनट्स यू वर ऑन स्कूल बिजनेस। और कभी टीचर बोले कि कैन समवन क्लीन द डस्टर, फिर तो बोनस आउटिंग। डस्टर को बाहर जाकर रेलिंग या वॉल के अगेंस्ट ठक ठक ठक ठक ठक और चौक डस्ट का क्लाउड सीधा यूनिफॉर्म पर। वापस आए तो लग रहा होता है कि केमिस्ट्री लैब में एक्सप्लोजन सर्वाइव करके आए हुए हैं। बट द फनी थिंग इज, स्कूल में हम वॉलंटियरिंग से जनरली भागते थे। हु वॉन्ट्स टू सॉल्व दिस ऑन द बोर्ड, सडनली सबको डेस्क बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगता था। लेकिन हु विल ब्रिंग मी द चॉक, मैम मी, बिकॉज 90s स्कूल में हैप्पीनेस के स्टैंडर्ड्स बहुत सिंपल थे। फेवरेट टीचर ने आपका पेन यूज कर लिया, आपको स्टाफ रूम तक चॉक लेने के लिए भेज दिया, या क्लास के बीच में कोई छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और पूरा दिन अंदर से फीलिंग आती थी कि आज टीचर ने मुझे चूज किया। क्या समाना था यार, एक पेन लेंड करके भी वीआईपी फीलिंग जो है हम जी लेते थे। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7, जिए 90s के क्लासरूम्स मेरे साथ।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
4: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
5: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत।
3: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
5: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल।
6: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस।
5: गुड्डू पंडित का बदला।
7: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
5: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु। रिलीजिंग 4th सितंबर आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट यू बाय विजन डिस्क्स सिंगापुर।
8: पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
9: हेलो हेलो, वेलकम बैक। रेडियो मस्ती 24/7 पर अंतराब के साथ और चल रहा है क्या मस्ती 90s मिक्स टेप। सो 90s सिनेमा में टीचर बोले तो हर बार चौक, ब्लैक बोर्ड और साइलेंस प्लीज, वो जरूरी नहीं था। कभी कभी टीचर वो इंसान भी था जो स्टूडेंट में वो चीज देख लेता था जो स्टूडेंट खुद भी नहीं देख पाता था। और 1993 में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसका नाम ही था सर सर सर। आया ये गाना याद आया, महेश भट्ट की सर। नसीरुद्दीन शाह जो है इसमें प्रोफेसर अमर वर्मा बनते हैं, पूजा भट्ट उनकी स्टूडेंट होती है और अतुल अग्निहोत्री मेकिंग हिज डेब्यू एज यंग मेल लीड। फिल्म याद है आपको, पूजा का जो कैरेक्टर था उसको स्टैमर की इशू थी, शी स्ट्रगल्स टू एक्सप्रेस हरसेल्फ एंड प्रोफेसर अमर उसे सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा रहे थे, ही वर्क्स ऑन हर कॉन्फिडेंस, एनकरेज करते थे टू हर टू स्पीक, टू कम आउट ऑफ दैट शेल। और मुझे यही टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बहुत ही 90s लगता है, बिकॉज हम सबके स्कूल या कॉलेज में शायद वो एक टीचर था ना जिसका सब्जेक्ट भूल गए होंगे शायद हम, लेकिन उन्होंने हमारे बारे में क्या कहा था वो याद है। यू शुड पार्टिसिपेट मोर, एक और बार ट्राई करो, डरो मत, आई नो यू कैन डू दिस, लाइक दीज वर्ड्स फ्रॉम अ टीचर। और बच्चा घर तक उनको कैरी करता था। बट हियर इज द इंटरेस्टिंग ट्रिविया अबाउट दिस वन। सर का बेसिक इंस्पिरेशन एक्चुअली बॉलीवुड से नहीं आया था, इट्स सेंट्रल इसका जो प्रेमिस था वॉज बेस्ड ऑन 1967 की ब्रिटिश फिल्म टू सर विथ लव, विच वॉज ऑल्सो अबाउट अ टीचर ट्राइंग टू रीच ट्रबल्ड स्टूडेंट्स। बट महेश भट्ट टुक दैट टीचर स्टूडेंट का कोर और उसमें फुल ऑन हिंदी सिनेमा डाल दिया उन्होंने, रोमांस भी, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट भी, मुंबई गैंग वॉर तक आ गया उसमें। और 90s बॉलीवुड खुद से टीचर की इमोशनल स्टोरी अच्छी है, लेकिन दो गैंगस्टर्स भी डाल देते इसमें, नहीं? एंड व्हाट अ कास्ट अराउंड नसीर सर, राइट? परेश रावल थे, गुलशन ग्रोवर थे, छप्पन टिकली, पूजा भट्ट, अतुल अग्निहोत्री एंड इवन लिटिल कुणाल खेमू जो है वो अपियर करते हैं प्रोफेसर अमर के बेटे बनकर। एंड म्यूजिक प्योर अर्ली 90s का टेरिटरी, अनु मलिक जी का जो है कॉम्पोजिशन, कतील शफाई का राइटिंग, कुमार सानू अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, सुन सुन सुन बरसात की धुन, आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर दिया, खुद भी पागल हो गए, तुमको भी पागल कर दिया, सर सर, दैट साउंड ट्रैक हैड 90s रिटन ऑल ओवर इट। बट टीचर्स डे इसमें जो है सर याद करने का रीजन मेरे लिए फिल्म का गैंग वॉर नहीं है, इट्स दैट सिंपल आइडिया एट इट्स सेंटर। अ गुड टीचर डजंट नेसेसरली चेंज योर मार्क्स, समटाइम्स दे चेंज द वे यू सी योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड एज वेल। और लाइफ में अगर एक ऐसा सर जो है या एक ऐसी मैम मिल गई हो तो उनकी क्लास टेक्निकली कब की खत्म हो चुकी है, लेसन शायद आज भी और अभी भी चल ही रहा है, नहीं? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, जी हाँ, बने रहिए मेरे साथ।

प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, चीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे। हाँ जी बिल्कुल, आखिर तक आ गए हैं, लास्ट पीरियड चल रहा है हमारा मस्ती 90s मिक्स टेप की इस पाठशाला में। रेडियो मस्ती 24/7 पर मैं 90s वाली अंतरा आपके साथ, और आज की मस्ती 90s मिक्स टेप की बिल्कुल घंटी यहाँ पर बजने वाली है छुट्टी वाली। आज पता नहीं कितने सालों के बाद जो है एकदम मेंटल अटैक

बट जाते जाते एक चीज करिए, अपने स्कूल को नहीं, अपने किसी एक टीचर को याद जरूर करिए. नॉट नेसेसरीली योर फेवरेट टीचर, मे बी वो टीचर जिन्होंने आपको बहुत डांटा था, वो जिनकी क्लास में आप बिल्कुल बात नहीं करते थे, वो जो हैंडराइटिंग के पीछे पड़े रहते थे हमारे, वो जो स्टेज पर नाम दे देते थे और हम बोलते थे मैम प्लीज मुझसे नहीं होगा. मे बी समवन हु टॉट यू फॉर ओनली वन ईयर. एंड हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, इतने सालों बाद चैप्टर याद नहीं, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था वो याद नहीं, मार्क्स तो बिल्कुल भी याद नहीं, लेकिन वो टीचर याद है. उनकी आवाज, उनका क्लासरूम में एंटर करने का स्टाइल, वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, वो एक डायलॉग जो वो रोज बोलते थे कि ओपन द विंडो एंड लेट द एयर फोर्स कम इन, इवन द वे दे रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड. मेमोरी भी कितनी कमाल की चीज होती है ना. इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिलीट कर दिए लेकिन लास्ट बेंच स्टॉप टॉकिंग परमानेंटली इस लाइन को सेव करके रखा है. सो दिस टीचर्स डे, अगर आप के किसी ओल्ड टीचर का नंबर अभी भी आपके फोन में है या फेसबुक व्हाट्सएप कहीं पर भी आप कनेक्टेड है, मे बी जस्ट सेंड देम दिस टाइनी मैसेज. बहुत कोई स्पीच लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैम या सर आई स्टिल रिमेंबर योर क्लास, हैप्पी टीचर्स डे. बिकॉज हम बड़े हो गए, स्कूल छूट गया, यूनिफॉर्म चली गई, रोल नंबर्स किसी और बैच को मिल गए, बट समवेयर इनसाइड अस देयर स्टिल दैट किड सिटिंग उस डेस्क पे वेटिंग फॉर द बेल, ट्राइंग नॉट टू गेट कॉट टॉकिंग एंड लर्निंग अ लिटिल बिट अबाउट लाइफ बिटवीन द टू चैप्टर्स. फिलहाल मैं आपकी अंतरा और आज के मस्ती 90s मिक्स टेप की क्लास यही खत्म करती हुई टीचर्स डे के लिए. हमारे सारे टीचर्स को दिल से थैंक यू. और मेरे 90s के क्लासमेट्स, यू मे नाउ लीव द क्लास, लेकिन कॉरिडोर में भागना नहीं, टीचर देख लेंगे. सी यू एक और एपिसोड के साथ, फिर नाउ द ड्रॉर फुल ऑफ आवर क्रेजी ब्यूटिफुल कलरफुल 90s की यादें. ऑफकोर्स टिल देन, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप ऑनकोर सुन रहे हो सो इट मस्ट बी 5th of September already. So 5th of September, it's Teacher's Day. So I thought that it's the perfect thing to do. Hai na? Nahi. Lekin, agar aap taza-taza sun rahe ho, to aaj hai teesri tarikh, 3rd of September. Correct. Very nice. Good. I am very happy that you are aware of your surroundings. Ye teacher ab yahan se nikalti hai. Bye-bye. Take care and have a great day ahead.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
3: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
2: कोई आवाज, कोई साज, सिनेमा की दुनिया के किस्से, रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है। जोश में रहो।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉन स्टॉप म्यूजिक नॉन स्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे च...

Welcome to your zone. Musti Music Cafe. Only music, only musti.

पक्षी नया हुआ आगाज, बरसों बाद भी देखो मेरी ट्रैक्टर से ऊंची आवाज।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
0: चेक इट

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
5: Check it

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
0: छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9158963 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
0: करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

Jay Kumar. Let's take a selfie now.

0: दस का बीस।
1: अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh Mehra. Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। नमस्कार, आदाब। ये दास्तां है उस कलाकार की जो हम सब को छोड़कर चला गया। रेडियो मसी 24/7 लाइव की पूरी टीम की ओर से ये एक ट्रिब्यूट है हमारे आज के लेजेंड ऋषि कपूर के नाम, जिनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, शो मस्ट गो ऑन। और इसीलिए आज मैं उनकी कहानी आप तक पहुंचाने आया हूं। सिंगापुर ये वो फनकार है जो एक गुलाब की खुशबू की मानिंद आया और फिर हवा के इस झोंके ने सबको महका दिया। ये वो सितारे हैं जो बॉलीवुड के सबसे पहले और सबसे मशहूर खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इस चॉकलेटी हीरो ने जब फिल्मों में अपना कदम रखा तभी साफ कर दिया था कि बचना है हसीनो, लो मैं आ गया। तो आज की कहानी होगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेरी टैलेंटेड वन एंड ओनली ऋषि कपूर की कहानी।
2: कमाल की लड़की है बाबू, मैंने तुम्हारी जैसी लड़की अपनी जिंदगी में

0: मैं
1: शायर तो नहीं।
0: वैसे कितने लड़के को जानते हो
2: शायर? देखिए

ऐसा एक्टर जिसने अपनी जिंदगी का पहला शॉट लेने के लिए ही रिश्वत ली थी। लेकिन क्या रिश्वत थी और क्यों ली थी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और बात करेंगे इसकी थोड़ी देर बाद। और ये भी बात करेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया जब इनको पहली बार पता लगा कि ये फिल्म में काम करने जा रहे हैं। तो सिंगापुर ऋषि कपूर को हमारी ये ट्रिब्यूट सुनना मत भूलिएगा, पूरा शो सुनिएगा और हमारे फेसबुक पेज पर आकर आप भी श्रद्धांजलि दे सकते हैं ऋषि कपूर साहब को। तो आइए, जैसे कि रिवायत है इस शो की, इस कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले आएंगे ये बेहतरीन गाने और उसके बाद शो मस्ट गो ऑन कहा था राज कपूर साहब ने, तो हम भी अपनी यूजुअल स्टाइल में इस शो को आगे कैरी करेंगे। सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से अपने समर के साथ।

0: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa. Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan jamming? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। Epic Encounters and Eva Events present Bhajan Jamming with backstage siblings Raghav and Prachi. गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिब्लिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। नॉट योर यूजुअल सिट एंड वॉच शो, सिंग अलोंग, क्लैप अलोंग, जैम अलोंग। Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a Masti Partner event.

वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो 24/7 लाइव पर आप हैं समर के साथ और सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से। और आज हम वर्सेटाइल एक्टर ऋषि कपूर की बात कर रहे हैं। ऋषि कपूर हिंदी सिनेमा में कपूर खानदान की पहली पीढ़ी यानी पृथ्वीराज कपूर के पोते हैं, शोमैन राज कपूर के बेटे हैं और रणधीर कपूर के छोटे भाई हैं। मैंने इन लोगों के नाम इसलिए लिए क्योंकि आप सब इन लोगों को जानते हैं। वैसे इन सबका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि ऋषि कपूर को कौन नहीं जानता इस दुनिया में भाई, कायनात इन्हें हीरो ही बनाना चाहती थी। इसीलिए 4 सितंबर 1952 को मुंबई में राज कपूर साहब के घर इनका जन्म हुआ। घर में इनके अलावा एक बड़ी बहन, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई राजीव कपूर है। बहन के अलावा इन तीनों भाइयों ने फिल्मों में काम किया। शो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने कैमरे के सामने किसी फिल्म में अपनी लाइफ का जब पहला शॉट दिया था तो इन्हें रिश्वत दी गई थी उस शॉट को देने के लिए। यह किस्सा वैसे तो बहुत ही मशहूर है लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार फिर से शेयर कर लेता हूँ। हुआ यूं था कि राज साहब की फिल्म श्री 420 की शूटिंग हो रही थी। एक गाना था जिसका शूट चल रहा था। गाना था प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अब इस गाने की एक लाइन आती है, हम न रहेंगे तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियां। तो साहब इस लाइन के लिए तीन बच्चों को दिखाना था तो राज साहब अपने तीनों बच्चों को सेट पर ले आए। बारिश का सीन था तो तीनों बच्चों को छाता लेकर जाना था लेकिन अब ऋषि कपूर साहब जो उस वक्त सिर्फ 2 साल के थे वो उस बारिश की वजह से बार बार रो रहे थे और शॉट ठीक से दे नहीं पा रहे थे। तो नरगिस जी ने उनको एक चॉकलेट देकर कहा उनसे कि अगर तुम अच्छा शॉट दोगे बेटा तो मैं तुम्हें और बहुत सारी चॉकलेट दूंगी। तो साहब वो चॉकलेट लेने के बाद उन्होंने वो शॉट दिया।

0: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
1: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
2: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत।
0: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
2: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल।
3: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस।
2: गुड्डू पंडित का बदला।
4: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
2: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु। रिलीजिंग 4th सितंबर आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क्स सिंगापुर। आमिर खान wondered.
5: Wow, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
2: सलमान खान wanted answers.
6: कैसे किया ये?
2: आर माधवन said.
7: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
2: And Boman Irani.
8: I say this with great respect. This is actually blown my mind.
2: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
9: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhan.
2: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
10: How do you know these things? Stop reading my mind!

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009 रेडियो मस्ती, और ये है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेजेंड्स। फिर से मैं समर आपके साथ, वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े लेजेंडरी एक्टर और बहुत अच्छे बड़े दिल वाले इंसान ऋषि कपूर साहब की। ऋषि कपूर साहब की शुरुआती इमेज कुछ ऐसी थी कि वो सिर्फ रोमांटिक रोल ही कर सकते हैं, लोग यही मानते थे। लेकिन साहब ये सब वक्त के साथ गलत साबित हो गए जब ऋषि कपूर साहब ने कई ऐसे कैरेक्टर रोल किए जो बेहद ही कमाल के और यादगार हो गए, और उन्होंने सबको बता दिया कि वो कपूर फैमिली से हैं इसलिए फिल्मों में नहीं है, बल्कि अपनी एक्टिंग के दम पर वो फिल्मों में टिके हुए हैं। वैसे देखा जाए तो 2 साल की उम्र में ही इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उस टाइम पर इनको कुछ समझ नहीं थी। आप खुद ही सोचिए, 2 साल के बच्चे को क्या पता होगा। लेकिन इसके बाद इनकी फिल्मों में एंट्री हुई राज साहब की फिल्म मेरा नाम जोकर से। मेरा नाम जोकर जो राज साहब का एक बहुत बड़ा ड्रीम था। इस वक्त ऋषि कपूर साहब महज 14 साल के थे। तो हुआ यूं कि इस फिल्म में राज साहब लीड रोल में थे, लेकिन अपने बचपन का रोल निभाने के लिए मिल नहीं रहा था सूटेबल बॉय। एक बार घर में राज साहब अपनी बीवी और ऋषि कपूर साहब के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे, तो वहां राज साहब ने अपनी बीवी यानी कृष्णा जी से कहा कि यार मुझे इस फिल्म में मेरे बचपन के रोल के लिए चिंटू की जरूरत है, क्या मैं इससे करवा लूं ये रोल अगर तुम कहो तो। कृष्णा जी से उन्होंने परमिशन ली और कृष्णा जी ने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, आप ठीक ही सोच रहे होंगे। तो साहब ये सब बातें चल रही थी और वहीं ऋषि कपूर इन सब बातों को सुन भी रहे थे और मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या किया मैं बताऊंगा आपको एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। इसे सुनेंगे तो आप भी हंसेंगे, मेरा वादा है आपसे। लेकिन फिलहाल एंजॉय कीजिए ऋषि कपूर साहब के ये सुपरहिट गाने रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं हूं समर आपके साथ लेजेंड्स। फिर से मैं

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर,
3: जीजी।
2: कृषि वाल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
3: GG Mart, your personal grocer.

वेलकम बैक समर के साथ आप सुन रहे हैं सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009 दैट इज रेडियो मस्ती, जहां पर चल रहा है लेजेंड्स फिर से। और आज मैं आपको ऋषि कपूर साहब की कहानी सुना रहा हूं, उसी कहानी को आगे बढ़ाता हूं। ब्रेक से पहले मैं आपको बता रहा था कि कैसे डाइनिंग टेबल पर ऋषि कपूर के पिताजी राज कपूर और कृष्णा कपूर जो उनकी माता जी हैं उनके बीच में एक बातचीत हुई, और मेरा नाम जोकर के लिए ऋषि कपूर का नाम उन्होंने बचपन के रोल के लिए अपने बचपन के रोल के लिए फाइनल कर दिया। और इसी डाइनिंग टेबल पर बैठे ऋषि कपूर ये सब सुन रहे थे, और सिर्फ सुन नहीं रहे थे बल्कि मनी मन बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने वहां तो कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस खाना खाया और वहां से चुपचाप उठकर सीधे अपने रूम में चले गए और अपनी ड्रेसिंग के ड्रॉअर से एक नोटबुक और पेन निकाला और बस अपने सिग्नेचर करना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने ये समझ लिया था कि अब तो वो हीरो बन गए, इसलिए ऑटोग्राफ देने की रिहर्सल करने लगे और बस फिर ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर डायलॉग्स बोलने की प्रैक्टिस करने लग गए कि जब मेरे से लोग कहेंगे तो मैं कैसे बात करूंगा। कुछ इस तरह से डायलॉग उन्होंने वहां बोले, हाय आई एम ऋषि कपूर, हाय आई एम ऋषि कपूर, ये भी नहीं, हाय आई एम ऋषि कपूर। वेल मुझे लगता है सिंगापुर ऋषि जी की जगह अगर मैं भी होता तो शायद मैं भी ऐसे कर रहा होता। सिंगापुर मेरा नाम जोकर में ऋषि कपूर के निभाए हुए किरदार के लिए उन्हें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड मिला था। मैं इस 14 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड, क्या बात है। और जब अवार्ड्स की बात होती है तो भाई सेलिब्रेशन की भी बात होती है, और सेलिब्रेशन बगैर म्यूजिक के अधूरा है। तो आइए इन गानों के साथ सेलिब्रेट करते हैं उनके पहले अवार्ड को, और इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे हम इन गानों के बाद। चिंटू जी उर्फ ऋषि कपूर की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। कीप लिसनिंग।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। Epic Encounters and Eva Events present Bhajan Jamming with backstage siblings Raghav and Prachi. गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। नॉट योर यूजुअल सिट एंड वॉच शो, सिंग अलोंग, क्लैप अलोंग, जैम अलोंग, भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।
0: Aamir Khan wondered.
2: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
3: कैसे किया ये?
0: R. Madhavan said.
4: Awesome.
3: You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
5: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
6: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonder Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
7: How do you know these things? Stop reading my mind.
8: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
9: वेलकम बैक सिंगापुर। सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो, रेडियो मस्ती आप सुन रहे हैं सिंस 2009, और मैं हूं आपके साथ समर, लेकर एक बार फिर से लेजेंड्स की एक और दास्तान। आज हम ऋषिदा की बात कर रहे हैं, ऋषि कपूर। ऋषिदा से आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, क्योंकि मैं ऋषिकेश मुखर्जी को भी ऋषिदा कहता हूं। तो हाँ, लेजेंड्स के सफर में हम उनकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब तक साहब ऋषिदा दो बार कैमरा फेस कर चुके थे, एक बार तो 2 साल की उम्र में और दूसरी बार 14 साल की उम्र में, लेकिन दोनों ही बार वो राज साहब की हेल्प के लिए आगे आए थे। लेकिन अब तक उनकी फिल्मों में एज अ हीरो एंट्री नहीं हुई थी। मेरा नाम जोकर बुरी तरह फ्लॉप रही। ऋषि कपूर को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पहली फिल्म करने की खुशी मनाए या फिर फिल्म के फ्लॉप होने का गम। राज साहब इस फिल्म के बाद बहुत बड़े कर्ज में डूब गए। हालात कुछ ऐसे हो गए कि आर के स्टूडियोज को भी गिरवी रखना पड़ा। लेकिन एक बार फिर राज साहब ने अपने इस बेटे पर भरोसा किया और एक ऐसा दाम खेला जिस पर इनकी बची खुची पूंजी और जिंदगी दोनों लगे थे। पीढ़ी दर पीढ़ी कपूर खानदान ने पूरी दुनिया का मनोरंजन किया था। उस खानदान की गरिमा का पूरा दारोमदार अब 19 साल के ऋषि कपूर के नाजुक कंधों पर आ गया था। राज साहब ने उस जमाने में बन रही फिल्मों से बिल्कुल हटकर एक फिल्म बनाई, नाम था उसका बॉबी। नवंबर 1973 में बॉबी रिलीज हुई और सुपर से भी ऊपर हिट हो गई। कर्ज उतर गया और ऋषि कपूर रातों रात बन गए स्टार।
10: झूठ बोले का।

0: ऋषि कपूर यूथ आइकॉन बन गए और बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के साथ ऋषि कपूर के लिए रोमांटिक रोल्स की कतार लग गई। लेकिन ऋषि कपूर को असली जिंदगी में रोमांस हुआ अगली ही फिल्म जहरीला इंसान से। कौन थी उसकी हीरोइन, कैसे हुआ, क्या हुआ, किससे हुआ, ये सब हम आपको बताएंगे अगली मुलाकात में। आप सुनिएगा पहली मुलाकात का ऋषि कपूर और उनकी प्रेमिका का ये किस्सा इस ब्रेक के बाद। आप सुनते रहेगा रेडियो मसी 24/7 लाइव सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो।
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: किया।
1: कभी किसी को

0: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
1: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
2: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत।
0: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
2: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल।
3: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस।
2: गुड्डू पंडित का बदला।
4: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
2: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु। रिलीजिंग 4th सितंबर आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क्स सिंगापुर। This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa.

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव। आप सुन रहे हैं, मैं हूँ समर आपके साथ और आज मैं आपको ऋषि कपूर की कहानी सुना रहा हूँ। तो साहब, ऋषि कपूर अपनी पहली फिल्म बॉबी से रोमांटिक हीरो के तौर पर स्टेब्लिश हो गए और इस सफलता के बाद उन्हें रोमांटिक रोल्स ही मिलने लगे। तो फिल्मों में तो ये रोमांस उनका चल पड़ा था और असली जिंदगी में भी रोमांस हुआ उन्हें, लेकिन अपनी अगली फिल्म जहरीला इंसान की हीरोइन नीतू सिंह से, जो बाद में फिर नीतू कपूर बन गई। इनकी दोनों की मुलाकात वैसे तो बॉबी के सेट पर ही हो गई थी। नीतू सिंह बॉबी की शूटिंग देखने आया करती थी, तो इस दौरान इन दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देख लिया था और जैसे ही ऋषि कपूर की आंख नीतू सिंह के चेहरे पर जाकर टिकी, नीतू का हो गया था। लेकिन तब तक ऋषि को पता नहीं

0: देखें।
1: और साहब ये सिलसिला यूं ही चलता रहा क्योंकि अभी तक उनको इस बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ था कि वो उनसे प्यार करने लगे, तो बातचीत दोनों की चलती थी, दोस्ती हो गई थी, तो बातचीत का ये सिलसिला चलता रहा। इसके बाद इन्होंने फिल्म की जहरीला इंसान और फिर इसके बाद तो काफी सारी फिल्में इन्होंने की और लगभग हर फिल्म हिट रही और उनका म्यूजिक तो कमाल का ही होता था, जबरदस्त हिट गाने, चाहे फिर वो कभी कभी हो या फिर

तो इस तरह ये रोमांस काफी सालों तक चला। ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि नीतू सिंह से पहले उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, पर किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। तब नीतू से इनकी मुलाकात हुई और इन्हें नीतू के साथ रहना अच्छा लगा, मतलब इनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। हालांकि नीतू के साथ ये उस लड़की की भी बातें किया करते थे और नीतू एक अच्छे दोस्त की तरह ये सब बातें सुन लिया करती थी। लेकिन जब कई सालों की दोस्ती हो गई तो उसके बाद एक दिन ऋषि कपूर एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में कश्मीर में थे और वहाँ उन्होंने नीतू सिंह को बहुत मिस किया और तब उन्हें रियलाइज हो गया कि वो नीतू से प्यार करने लगे। और वहां से शूटिंग का पैकअप होते ही वो मुंबई आए और मुंबई आते ही वो नीतू से मिले और कहा, यार मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, सच में बहुत मिस किया। और फिर एक दिन उन्होंने नीतू को प्रपोज कर ही दिया और शायद नीतू सिंह ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर ही लिया होगा क्योंकि फिर बाद में इन दोनों ने शादी कर ली थी। लेकिन इनकी सगाई बड़ी मजेदार तरीके से हुई थी। कैसे हुई थी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जब शादी और सगाई की बात होती है तो फिर म्यूजिक की बात तो होना लाजमी है। तो ये गाने आ रहे हैं, एक बड़ा ही खूबसूरत म्यूजिकल ब्रेक आ रहा है। ऋषि कपूर की फिल्मों के गाने आप सुनिए, एंजॉय कीजिए और वापस आइए। समर यही आपका इंतजार कर रहा है। यह किस्सा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, आप रिलेट कर पाएंगे। स्टे कनेक्टेड।

0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.

0: आइए आइए, वेलकम बैक। मुझे मालूम था आप इन गानों के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते थे कि क्या हुआ था ऋषि कपूर और नीतू सिंह की सगाई में। वेल, मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपका दिल से स्वागत करता हूं। ऋषि कपूर की शादी के बाद हम कर रहे थे, लेकिन किस तरीके से इनकी सगाई हुई वो बड़ा ही मजेदार था। दरअसल दिल्ली में ये जुबली कुमार राजेंद्र कुमार की बेटी की मंगनी ऋषि कपूर के किसी रिलेटिव से हो रही थी, तो वहाँ गए हुए थे। तो ऋषि कपूर भी उस फंक्शन में मौजूद थे और नीतू सिंह भी वहाँ थी। अब इनकी दोस्ती को काफी टाइम हो गया था और घर में सबको पता भी लग गया था कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो साहब, ऋषि कपूर की बड़ी बहन ने पहले से कुछ प्लान कर रखा था, इसीलिए उन्होंने नीतू सिंह को भी उस फंक्शन में बुला लिया था और पूरा परिवार तो वहाँ मौजूद था ही। और साथ ही उसी फंक्शन में इन दोनों की सगाई अनाउंस कर दी गई। अनाउंस नहीं कर दी गई बल्कि करा भी दी गई। और कमाल की बात तो यह है कि इन दोनों को पता ही नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है, क्या प्लान है ऋषि की दीदी का।
1: हम

Well, मुझे लगता है कि इस तरीके से तो बहुत कम सगाइयां होती हैं। खैर जी, चलिए जो भी है, लेकिन ये कपल बॉलीवुड का मोस्ट ब्यूटीफुल कपल है। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूँ आपको ऋषि कपूर के बारे में। ऋषि कपूर साहब को रात में शूटिंग करने से बहुत नफरत है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। हुआ यूं कि रमेश सिप्पी की फिल्म सागर की शूटिंग ज्यादातर रात में होती थी, तो ऋषि कपूर रात में शूटिंग करते और घर सुबह आ जाते, तो वो जब घर आते तो उनके बच्चे स्कूल चले जाते थे और वो शूटिंग पर जाते तो बच्चे सो जाते थे। यानी ऐसे हालात के बाद ऋषि कपूर को लगने लगा कि वो अमेरिका में रहने लग गए। जब वो काम करते हैं तब सब सो रहे होते हैं और जब ऋषि कपूर सोते हैं तब सब जग रहे होते हैं। तो ऋषि कपूर बुरी तरह से परेशान हो चुके थे और उन्होंने कसम खा ली कि अब वो रात में कभी भी शूटिंग नहीं करेंगे, किसी भी फिल्म के लिए नहीं करेंगे। लेकिन एक बार फिर कोई डायरेक्टर आया था रात की शूटिंग का कॉन्सेप्ट लेकर। फिर क्या हुआ, ऋषि कपूर ने क्या किया, क्या वो फिल्म एक्सेप्ट की या रिजेक्ट कर दी, कौन सी वो फिल्म थी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और सब कुछ जानेगा सिंगापुर रेडियो 24/7 लाइव के जरिए। मैं हूं समर, आज ऋषि कपूर की कहानी लेकर। चांदनी

जरा अपनी सूरत दिखा दे, समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक सिंगापुर, ऋषि कपूर स्पेशल शो सुन रहे हैं आप लेजेंड्स फिर से मैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे फिल्म सागर की शूटिंग के बाद ऋषि कपूर को रात में शूटिंग करने से चिढ़ हो गई थी, नफरत सी हो गई थी, परहेज करने लगे थे। तो ऐसे ही ऋषि कपूर साहब एक बार कहीं शूटिंग कर रहे थे किसी फिल्म की दिन में, और वहां एक डायरेक्टर साहब आए जो काफी दिनों से ऋषि कपूर के पीछे पड़े हुए थे कि मेरी स्टोरी सुन लो भाई, मेरी स्टोरी सुन लो। तो ऋषि कपूर ने उन्हें शूटिंग पर ही बुला लिया कि आप तब आ जाइएगा, तभी सुना दीजिएगा। तो साहब आ गए। ऋषि कपूर साहब उस वक्त दो दो शिफ्टों में काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म की शिफ्ट खत्म होते ही मुझे दूसरी शिफ्ट के लिए चैंबूर जाना है, तो तुम मेरी गाड़ी में मेरे साथ चलना और अपनी फिल्म की स्टोरी सुना देना। तो साहब दोनों बैठ गए और पहले तो कुछ ऐसे ही बातें करने लगे, और फिर डायरेक्टर स्टोरी सुनाने लगा। उसने पहली लाइन ये बोली, चिंटू भाई ये एक रात की स्टोरी है, जिसमें बस इतना ही उन्होंने बोला कि ऋषि कपूर तुरंत बोले, क्या क्या क्या क्या क्या क्या बोला तुमने, जरा फिर से बोला, फिर से बोला। हाँ, डायरेक्टर फिर से बोला, जी वो ये कि ये एक रात की स्टोरी है। ऋषि कपूर ने बोला, तो मतलब रात में शूटिंग करनी पड़ेगी। डायरेक्टर बोला, जी बिल्कुल। ऋषि कपूर ने अपने ड्राइवर को आवाज लगाई, ड्राइवर गाड़ी रोको। ऋषि कपूर ने तुरंत उस डायरेक्टर को उतारा और बोला कि आज के बाद मेरे पास रात की शूटिंग की स्टोरी लेकर मत आना। यानी उनकी स्टोरी भी नहीं सुनी ऋषि कपूर ने और उन्हें वापस भेज दिया। कमाल बात है। ऋषि कपूर गुस्सा करते हैं ऐसा आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन कई बार वो सोशल साइट्स पर भी अपने व्यूज रखते, अपने गुस्से को भी दिखाते नजर आ जाते हैं। तो सिंगापुर और भी कई सारी बातें ऋषि कपूर साहब की, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप बने रहेगा समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। स्टे कनेक्टेड।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। Epic Encounters and Eva Events present Bhajan Jamming with backstage siblings Raghav and Prachi. गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिब्लिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। नॉट योर यूजुअल सिट एंड वॉच शो, सिंग अलोंग, क्लैप अलोंग, जैम अलोंग। Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a Masti Partner event.

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together. Aamir Khan wondered.
1: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome.
4: You're very good, yeah. Very well done.
0: And Boman Irani.
5: I say this with great respect. This is actually blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
6: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
7: How do you know these things? Stop reading my mind.
8: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
9: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
10: किया।
9: कभी किसी को दिल दिया?
10: किया।
9: मैंने भी दिया।
11: वेलकम बैक सिंगापुर, आप सुन रहे हैं सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009, रेडियो मस्ती, और मैं हूं आपके साथ समर लेजेंड्स वाला। तो ऑफ कोर्स मेरे शो का नाम है लेजेंड्स और आज हम बात कर रहे हैं ऋषि कपूर साहब की। जिस जमाने में अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के किरदार में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे रहे थे, हर तरफ सिर्फ अमिताभ की एक्शन वाली फिल्मों का बोलबाला था, और न सिर्फ अमिताभ बल्कि और एक्टर्स भी इसी तरह की फिल्में बना रहे थे, तो इस एक्शन की आंधी में अपने ऋषि कपूर ने रोमांटिक हीरो की इमेज बनाई जिसने उस आंधी को बराबर की टक्कर दी। बॉबी के बाद जहरीला इंसान फ्लॉप रही, लेकिन फिर ऋषि कपूर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। रफू चक्कर, हम किसी से कम नहीं, दूसरा आदमी, और दूसरा आदमी का वो गाना तो मेरा फेवरेट है, आंखों में काजल है।

इन फिल्मों के बाद अगर ऋषि कपूर की किसी फिल्म को याद किया जाता है तो वो है चांदनी, जिसमें ऋषि कपूर स्वेटर को शर्ट के ऊपर मफलर की तरह डालकर आते हैं। और न सिर्फ चांदनी में बल्कि उस टाइम लगभग हर फिल्म में ऋषि कपूर का यही लुक रहा, यही अंदाज रहा, और वो बड़ा ट्रेंडी भी रहा, फैशन में आ गया था वो। आज भी उस लुक की कॉपी की जाती है। सिंगापुर हर एक्टर की लाइफ में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें वो नहीं कर पाता किसी रीजन से, और फिर वो फिल्में बहुत हिट हो जाती हैं। जैसे कि अगर अभी के टाइम की बात करूं तो लगान पहले शाहरुख खान को ऑफर की गई थी, लेकिन किसी वजह से वो ये नहीं कर पाए, या फिर उन्हें स्टोरी अच्छी नहीं लगी, नहीं पता हमें। लेकिन आप देखिए आमिर ने क्या काम किया और लगान आज भी कितनी बड़ी हिट फिल्म है। ऐसे ही ऋषि कपूर को भी एक फिल्म का ऑफर आया था और वो थी प्यार झुकता नहीं। लेकिन ऋषि कपूर का इसमें रोल था एक बाप का जो 4 साल की बेटी का बाप होता है। दरअसल इसी टाइम पर वो नासिर हुसैन साहब की हम किसी से कम नहीं पर काम कर रहे थे, जिसमें उनका एक रोमांटिक एक्टर का रोल था जिसमें वो गिटार बजाते हैं। तो उन्हें लगा कि शायद प्यार झुकता नहीं से उनके करियर पर फर्क पड़ेगा, तो उन्होंने ये फिल्म नहीं की। लेकिन वो फिल्म मिथुन चक्रवर्ती को मिली और वो फिल्म मिथुन के करियर की एक बहुत बहुत बड़ी फिल्म साबित हुई। लेकिन ऐसा होता रहता है सिंगापुर, अब हर फिल्म को तो आप कर नहीं सकते ना, हर फिल्म की स्टोरी आपको अच्छी नहीं लग सकती है, ऐसा होता है, सबकी पसंद अपनी अपनी होती है। अभी फिलहाल मुझे मालूम है कि एक म्यूजिकल ब्रेक का वक्त है और आपको इस ब्रेक में आने वाले हर गाने से मोहब्बत हो जाएगी, हर गाना आपको प्यारा लगेगा, क्योंकि ये गाने ऋषि कपूर की फिल्मों से। आइए इन गानों को सुन लेते हैं। मैं एक आखिरी मुलाकात के लिए आपसे बहुत जल्द मिलूंगा इन गानों के तुरंत बाद। मैं हूं समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। कीप लिसनिंग।

0: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
1: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
2: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत।
0: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
2: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल।
3: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भौकाल के प्रिंस।
2: गुड्डू पंडित का बदला।
4: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
2: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु। रिलीजिंग 4th September, आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर। This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa.
5: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
6: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
7: एक बार फिर से आपका स्वागत है, मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से। मेरा काम है एक कहानी आप तक पहुंचानी, एक फिल्मी सितारे की कहानी जिसने अपनी चमक से हमारी जिंदगी को रोशन कर दिया। और आज मैंने आपको सुनाई ऋषि कपूर की कहानी। Most handsome and talented, one of the best romantic hero Indian film industry ever have, Rishi Kapoor ki kahani. Versatile actor Rishi Kapoor, jinhone filmon mein 25 saal tak alag alag kirdaar nibhaye. Hero to wo rahe, aur uske baad jo unhone character roles kiye, wo bhi aise aise character roles kiye, jinhen dekhkar critics ne bhi daanton tali ungliyan daba li. Kapoor and Sons film mein nibhaye hue unke kirdaar ko kaun bhul sakta hai bhala? और इस फिल्म के मेकअप के लिए उन्हें 5 घंटे लगते थे और फिर उसके बाद शूटिंग शुरू होती थी और शूटिंग खत्म होने के बाद 2 घंटे लगते थे मेकअप उतारने में। इतना डेडिकेशन बहुत कम एक्टर्स में देखने को मिलता है जो ऋषि कपूर साहब के पास था। ऋषि कपूर ने तमाम तरह के रोल किए लेकिन नेगेटिव किरदार सिर्फ एक फिल्म में किया। वो मौका इन्हें मिला करण जौहर की फिल्म अग्निपथ में। इस फिल्म में रऊफ लाला का किरदार ऋषि कपूर साहब ने जिस ईमानदारी से और जिस शिद्दत से निभाया है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने जब नेगेटिव शेड का किरदार निभाया तो ऐसा कि आपको भी गुस्सा आ जाए, और इस खूबसूरती से इसे प्ले किया कि ऐसा लगा ही नहीं कि ऋषि कपूर पहली बार कोई नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं।
8: अब सुन, गौर से सुन, बात यह है कांचा कि मुझे तेरी शक्ल ही पसंद नहीं आई। इसमें तेरी बदसूरती का कोई कसूर नहीं है, बदसूरत मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन तेरी शक्ल से घिन टपकती है, घिन। और दूसरा, धंधा बराबरी वालों में होता है।
7: अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने वापसी की 27 साल बाद 102 नॉट आउट में। इससे 27 साल पहले ये दोनों अजूबा में नजर आए थे और अमिताभ बच्चन साहब ने भी इनके जाने पर ये कहा कि आई एम डिस्ट्रॉयड, मैं खत्म हो गया हूं, बर्बाद हो गया हूं। जी हां, 30 अप्रैल 2020 की सुबह कहानी खत्म हुई, और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोते रहे और तालियां बजती रही। ये उस जादूगर का आखिरी तमाशा था। वो कहते ना कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आपकी इस बड़ी जिंदगी को हम सबका सलाम है ऋषि कपूर साहब। लेकिन नहीं, आप गए कहां हैं? आप कहीं नहीं गए, आप कहीं जा ही नहीं सकते, आप यहीं तो हैं हमारे बीच। कोई अलविदा नहीं, ना कोई अलविदा नहीं कहेगा। आपकी मुस्कुराहट हमें यूं ही गुदगुदाती रहेगी, आपकी मोहब्बत करने की अदा हमें प्यार करना सिखाती रहेगी। आप कहीं नहीं जा सकते, आप जा ही नहीं सकते कहीं, क्योंकि आप अपने करोड़ों चाहने वालों के दिलों में धड़कते रहेंगे, उनकी यादों में महकते रहेंगे ऋषि कपूर साहब। तो हम आपको अलविदा तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आप जहां रहें खुश रहें और खुशियां बिखेरते रहें। अभी के लिए चलता हूं, फिर मिलता हूं, आप अपना ख्याल रखिएगा।

किया पटना। यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

Hi everyone, this is Renuka and welcome to another episode of Dear Masti Dil Se. Dear Masti Dil Se, because sometimes radio par baitha ek anjana insaan aapko duniya se zyada samajh leta hai. Aaj ke show ki shuruaat thodi alag, thoda hatke. बस आज एक थॉट दिमाग में आया. कभी कभी न्यूज़ देखो तो लगता है कि दुनिया में कितना कुछ एक साथ हो रहा है. कहीं वॉर है, कहीं पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, कहीं नेचुरल डिजास्टर्स हैं, और इसी वीक ऑफकोर्स नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर आई डेवस्टेटिंग फ्लड्स ने हजारों फैमिलीज की जिंदगी पल में ही बदल दी. और हम स्क्रीन के इस तरफ बैठ कर सोचते हैं लाइफ रियली इज अनप्रिडिक्टेबल, है ना. लेकिन फिर हम फोन साइड पर रखते हैं और अपनी जिंदगी में लौट आते हैं, और यहाँ भी अपनी छोटी बड़ी बैटल्स चल रही होती हैं. किसी का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, किसी को अपने बच्चों की फिक्र है, कोई करियर को लेकर परेशान है, किसी का दिल किसी अपने के बिहेवियर से दुखी है, और कोई बाहर से बिल्कुल ठीक दिख रहा है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ कैरी कर रहा है. और कभी कभी हम खुद को गिल्टी भी फील करते हैं. दुनिया में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और मैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर इतनी अपसेट क्यों हूँ. बट यू नो व्हाट, पेन डजंट नीड कंपैरिजन. आपकी प्रॉब्लम किसी और की प्रॉब्लम से छोटी हो सकती है, लेकिन अगर वो आपको रात को सोने नहीं दे रही तो वो आपके लिए रियल है. शायद जिंदगी का आंसर ये नहीं है कि हम प्रॉब्लम से बच जाए, बिकॉज वी कैन नॉट. शायद आंसर ये है कि इस अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में हम थोड़ा और प्रेजेंट रहें, थोड़ा कम ईगो रखें, थोड़ा जल्दी माफ करें, थोड़ा ज्यादा फोन करें उन लोगों को जिनसे हमें प्यार है, और जब कोई कहे आई एम फाइन, कभी कभी एक बार और पूछ ले आर यू रियली फाइन. तो क्या आप सच में रियली फाइन हैं? अगर हैं तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं है तो फिर हम हैं ना आपके लिए. चलिए, दिस इज योर स्पेस, दिस इज डियर मस्ती दिल से. शुरू करते हैं आज की चिट्ठियां, और इतना याद रखिए एक बार और, पेन डज नॉट नीड कंपैरिजन. ठीक है, तो कुछ भी है दिमाग में लिख भेजिए हमको 9151896 3 anonymously.

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: दुनिया इतनी खराब हो गई है ना कि हर कोई बुरा लगने लगा है। मतलब अच्छा शख्स भी अब बुरे की कैटेगरी में ही काउंट होता है। इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है, इसमें उन चंद लोगों की गलती है जिन्होंने ये सारी चीजें करी हैं। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड जिन्होंने मुझे लेटर भेजा है उन्होंने कुछ ऐसी ही बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि एक इंसिडेंस मेरे संग रिसेंटली हुआ। मतलब हम इतने केसेस पढ़ते हैं, इतना कुछ करते हैं, सो मैं रिसेंटली थाईलैंड गई हुई थी। तो मेरे दिमाग में एज अ सोलो ट्रैवलर जितनी सिक्योरिटी हो सकती है, जितने बुरे ऑप्शंस और जितनी पॉइंट्स मैं रख सकती हूँ मैंने रखी थी। सो मेरा टैक्सी वाला जो है ना, वो लेट नाइट मुझे एक सुनसान रोड पे ले जाता जा रहा है और मैं ना उसके बारे में बहुत बुरा सोच रही हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ये है, कुछ तो वो है। और एंड में उसने मुझे अच्छे से छोड़ा, सी ऑफ किया, इवन वो रुका रहा जब तक मैंने होटल में चेक इन नहीं किया। सारी चीज़ों का उसने मुझे एक्सप्लेनेशन भी वहाँ खड़े होकर दिया। तो मुझे इतना बुरा लग रहा था कि पूरे रास्ते जिसके लिए मैं इतना बुरा सोच रही थी वो बुरा नहीं था। तो आज भी मन में ये गिल्ट ज़रूर निकल कर आती है। सो मैं आपको बस बोलना चाहूँगी कि ये आपकी गलती नहीं है, आप जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो। बिकॉज आज के टाइम पर अगर आपने वर्स्ट नहीं सोचा ना तो आपके संग कुछ अच्छा नहीं होगा, और आपने सब कुछ अच्छा अच्छा सोचा ना तो वर्स्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हाँ, तो लाइफ में हाँ, सामने वाले को इतनी जल्दी हमें जज करना नहीं चाहिए, पर जज करा तभी तो आप और ज्यादा कॉन्शियस हो गए, राइट? तो ये सोचना उनके लिए गलत नहीं था, पर ये सोचना कितना सही है कि आपने किसी को गलत समझा और आइंदा आप ऐसा नहीं करोगे, राइट? बिल्कुल, डियर मस्ती दिल से शो पर ऐसे ही सवाल जवाब बने हुए हैं। मैं आरजे नुपुर आपके साथ।

वेलकम बैक। इस समय मैं एक चिट्ठी नहीं पढ़ने वाली हूँ, इस समय मैं एक ऑब्जर्वेशन के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। और वो ऑब्जर्वेशन इज अबाउट अ वीडियो दैट आई रिसेंटली सॉ एंड इट रियली डिस्टर्ब्ड मी। नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स, डियर मस्ती, दिल से। मैंने इसके बारे में कल अपने मॉर्निंग शो पर भी हल्की सी बात करी थी। ये वीडियो जो कि कहा जा रहा था दैट्स फ्रॉम द फ्लड्स अराउंड द नेपाल टिबेट रीजन, बॉडीज जहाँ पर पानी में बहती चली जा रही हैं, एंड देयर वर टू पीपल ट्राइंग टू पुल देम टुवर्ड्स द बैंक, बट देन यू रियलाइज वो बालों से पकड़कर उस बॉडी को अपनी तरफ इसलिए खींच के पकड़े हुए थे जहाँ पानी का करंट बॉडी को अपनी तरफ लेकर जा रहा था, और ये लोग उसको बालों से खींचे हुए थे। दे वर पुलिंग द ज्वेलरी दैट दोज डेड पीपल वर वेयरिंग। तो मैंने सोचा, रियली किसी की मौत हुई है, सम फैमिली समवेयर हैज लॉस्ट अ पर्सन दे लव, एंड एट दैट मोमेंट यू कैन स्टिल थिंक अबाउट व्हाट यू कैन टेक फ्रॉम देम। और उसके बाद इट मेड मी थिंक अबाउट समथिंग मच बिगर। वी डोंट हैव टू बी स्टैंडिंग बिसाइड अ फ्लड टू फॉरगेट ह्यूमैनिटी। ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होता है ना। आपके बॉस होते हैं, किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास पोजीशन होता है, किसी के पास पावर होता है टू मेक समवन्स लाइफ डिफिकल्ट, टू ह्यूमिलिएट समबडी, टू एक्सक्लूड देम, टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर वीकनेस, एंड मे बी नोबडी कैन स्टॉप यू, बट यू कैन स्टॉप योरसेल्फ। क्योंकि पावरफुल होने का मतलब ये नहीं होता दैट यू आर द बिगर पर्सन। हाउ यू ट्रीट समवन हु हैज लेस पावर देन यू डज। बी काइंड। The employee who is struggling, the elderly person taking too long, the waiter who made a mistake, the colleague everyone is laughing at, the family member who's having a difficult time, you don't know what somebody is carrying inside. And perhaps that's exactly why I believe ki hamara jo ye wala show hai na dear masti dil se, kitna zaruri hai aaj ki zindagi mein. क्योंकि हर वीक, हर हफ्ते बिहाइंड दीज एनोनिमस लेटर्स हम डिस्कवर करते हैं कुछ बहुत ही सिंपल। लोगों को दर्द है, लोग कंफ्यूज्ड हैं, पीपल आर लोनली, एंड समटाइम्स दे डोंट नीड अनदर पर्सन जजिंग देम, दे जस्ट नीड समबडी टू लिसन। सो व्हाटएवर पोजीशन यू होल्ड इन लाइफ गाइज, जितने भी सक्सेसफुल आप हो, नेवर बिकम सो पावरफुल दैट यू फॉरगेट टू बी काइंड। क्योंकि अल्टीमेटली बिफोर बींग अ बॉस, अ लीडर, अ प्रोफेशनल, अ पेरेंट, अ पार्टनर, वी आर ह्यूमन बींग्स। And perhaps the world needs us to remember the human part a little more often. Hai na? Senti ho gaya? Par hai to sach. Sochiyega.

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
3: जीजी
2: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
3: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मैं अंतरा यहाँ पर जुड़ गई हूँ आपके साथ। और अगली चिट्ठी मेरे पास ये जो है, इसका सवाल सुनने में छोटा लग सकता है कि कॉम्प्लीमेंट ही तो है, बट इसके अंदर एक और भी बड़ा सवाल है। क्या रिलेशनशिप में लव्ड फील करना और अप्रिशिएटेड फील करना अलग हो सकता है? चलिए सुनते हैं। डियर मस्ती, My husband is caring and dependable. He is there whenever I need him, and I know he loves me. But he almost never compliments me. जब मैं ड्रेस अप होती हूँ या फिर मैं कुछ अच्छा काम करती हूँ, sometimes I just want to hear that he appreciates me. I know actions matter more than words, so I feel silly even wanting this when I already have a good husband. Can you have a good relationship and still feel emotionally underappreciated? Okay. डियर लिसनर, एब्सोल्युटली। एंड अपने आप को और अपने इमोशन को जो है बिल्कुल सिली मत कहिए। आप ये नहीं कह रहे कि हस्बैंड हर सुबह उठकर अनाउंस कर दे सबको कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत एंड टैलेंटेड जो है लड़की है उनके जिंदगी में। यू आर सिंपली सेइंग दैट समटाइम्स आई वांट द पर्सन आई लव टू टेल मी दैट ही सीज मी। एंड जैसे कि आपने कहा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, दैट इज वेरी ट्रू, एंड दैट डजंट मीन वर्ड्स हैव नो वॉइस एट ऑल, isn't it? Maybe your husband expresses love through actions. Problem hai, solve kar diya. Aapko zarurat hai, he is there. Responsibility hai, he'll take it. Unke dimag mein maybe, of course I appreciate her. Usse pata to hai, mujhe har cheez batane ki zarurat thodi na hai. Aur aapke dimag mein, haan, pata hai, par kabhi bol bhi diya karo. So neither person loves less. Sometimes we are simply sending love in one language and waiting to receive it in another. Lekin ek distinction zarur hai. Agar compliments na milne par aapki self-worth shake hone lagti hai, to phir thoda apne andar bhi jhaankna zaruri hai. Because partner ka appreciation beautiful hai. Par partner ko humari self-worth ka full-time manager bilkul nahi bana dena chahiye. Lekin occasionally wanting to hear that you look lovely, ya phir I appreciate what you do, that's not unreasonable validation. That's appreciation. So silently wait मत कीजिए कि वो खुद figure out कर लेंगे ये सारी बातें. Just go and tell him. Don't start with the negative sentence कि तुम तो कभी मेरी तारीफ ही नहीं करते. No. Instead, say something like, I know you love me because you show it in so many ways, but I have realized verbal appreciation जो है वो मुझे काफी matter करता है. So when you say something nice or appreciate what I have done, it makes me feel even nicer. So basically, अगर आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो, यू आर हेल्पिंग हिम अंडरस्टैंड यू, एंड इक्वली डोंट बिकम सो फोकस्ड ऑन द वर्ड्स यू आर मिसिंग दैट यू स्टॉप नोटिसिंग द लव यू आर ऑलरेडी रिसीविंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मे बी यू नो, मैसेज मी व्हेन यू रीच इज हिज आई लव यू। मे बी टेकिंग समथिंग ऑफ योर प्लेट व्हेन यू आर टायर्ड इज हिज वे ऑफ शोइंग एप्रिसिएशन। नोटिस हिज लैंग्वेज व्हाइल टीचिंग हिम अ लिटिल ऑफ योर्स। बिल्कुल। और अगर शुरू शुरू में उनका एफर्ट ना थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगे, जस्ट टेक द कॉम्प्लीमेंट। होप दिस हेल्प्स डियर लिसनर। यह है डियर मस्ती दिल से और रेडियो मस्ती 24/7।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मैं अभी फिलहाल आपके साथ अंतरा यहाँ पर बिल्कुल जुड़ी हुई हूँ और अपने अगले चिट्ठी की तरफ जो है बिल्कुल बढ़ना चाहती हूँ। मैं अभी इसको पढ़ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा जोन है ये, क्योंकि किसी ने कुछ किया तो किया हो तो रीजन मिल जाता है, लेकिन कोई बस हमें पसंद नहीं करता फॉर नो रीजन एट ऑल, दिमाग डिटेक्टिव जो है वो बन जाता है कि मैंने कुछ बोला था क्या, किसी ने कुछ कहा उस दिन, हेलो तो बोला था ना मैंने कुछ गलत किया क्या, हाउ वी कीप ऑन क्वेश्चनिंग ourselves। सो चिट्ठी कुछ ऐसी कहती है, डियर मस्ती, देयर समवन इन माय सोशल सर्कल हु क्लियरली डजंट लाइक मी, शी इज नेवर ओपनली सेड दैट एनीथिंग बट आई कैन फील इट इन द वे शी रिस्पॉन्ड्स टू मी कंपेयर टू एवरीवन एल्स। मैंने अपना बिहेवियर भी चेक किया एंड आई जेन्युइनली कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग आई हैव डन, सो माय इंस्टिंक्ट इज टू क्लियर द एयर, बट अनदर पार्ट ऑफ मी थिंक्स दैट व्हाई डू आई नीड एवरीवन टू लाइक मी, कैन वी सिंपली एक्सेप्ट दैट समटाइम्स समवन जस्ट वांट। माय डियर लिसनर, मुझे ऐसा लगता है अक्सर आप लोग अपने सवालों का जवाब जो है अपने सवालों के साथ साथ ही दे देते हैं। Yes, हम सब कहते हैं आई डोंट केयर वॉट पीपल थिंक अबाउट मी अंटिल वी डिस्कवर समबडी डजंट लाइक अस, फिर सडनली आता है बट व्हाई। तो क्लियर द एयर करने से पहले आई थिंक आई विल आस्क माइसेल्फ अ क्वेश्चन, दैट इज देयर एक्चुअली समथिंग टू क्लियर, हैज शी बीन डिसरिस्पेक्टफुल, दैट्स माय क्वेश्चन टू यू, सेड समथिंग अबाउट यू, इज हर बिहेवियर मेकिंग सिचुएशंस अनकंफर्टेबल, if yes then you should and you must talk, you have a clear communication with that person, but agar wo simply aap se warm nahi hai then maybe there is not any kind of conflict, maybe there is simply no connection, wo kya kehte na vibe match nahi ki aap logo ki, so ho sakta hai personalities match nahi karti, maybe she has misunderstood you, maybe something about your personalities doesn't click, or maybe without any dramatic reason whatsoever she just doesn't particularly like you and that's uncomfortable but allowed। सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूर करिए, अगर डिफरेंट पीपल रिपीटेडली सेम फीडबैक अगर कुछ कह रहे हैं स्टॉप एंड मे बी देन यू कैन चेक कि सब ठीक तो है, बट सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ डाउट में डिफरेंस होता है। आपने ऑनेस्टली चेक कर लिया, अब हर कॉन्वर्सेशन रीप्ले करना, एक्स्ट्रा स्वीट बनना, खुद को प्रूव करना जस्ट टू विन वन पर्सन अप्रूवल, आई वुड आस्क व्हाई, स्पेशली जब 15 लोग आपको हैप्पीली एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारा फोकस उसे एक इंसान में है जो मैप नहीं कर पा रहा है, मैं क्या करूंगी, पोलाइट रहूंगी, रिस्पेक्टफुल रहूंगी, नॉर्मल रहूंगी बट परफॉर्म नहीं करूंगी। बेसिक रिस्पेक्ट हम पीपल को ओ करते हैं, राइट, बीइंग लाइक्ड बाय देम वी डोंट, और अगर डिसलाइक कभी डिसरिस्पेक्ट बन जाए, सार्कास्टिक कमेंट्स, रूमर्स, डेलिबरेट एक्सक्लूजन, तब एड्रेस द बिहेवियर, डोंट आस्क व्हाई डोंट यू लाइक मी, कहिए आई हैव नोटिस्ड दिस हैपनिंग अ फ्यू टाइम्स, इज देयर समथिंग वी नीड टू डिस्कस, या ट्रस्ट मी दिस वर्क्स एवरी सिंगल टाइम, बिकॉज नाउ यू आर नॉट आस्किंग फॉर अप्रूवल, यू आर आस्किंग कि भाई क्या चल रहा है, हेलो। So dear listener, maybe growing comfortable with ourselves also means accepting. You can be perfectly decent person and still not be everyone's person and that is okay. वैसे भी आपको भी तो दुनिया का हर इंसान पसंद नहीं आता होगा, I'm sure. And सबने आपका क्या बिगाड़ा है, कुछ भी नहीं. Sometimes we simply don't connect. So let her have her opinion and you keep your peace. Your job is not to be universally liked. Your job is to make sure you still like the person you are being. बाकी गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। ये है जियो मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से। वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है आपका फेवरेट वाला शो। हाँ, डियर मस्ती, दिल से। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मेरे पास आया है। हाय रेणुका, आई एम वर्किंग विद समवन ऑन एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट। प्रॉब्लम ये है दैट दिस पर्सन हैज अ ह्यूज ईगो। उसके पास बहुत स्ट्रांग आइडियाज हैं अबाउट एवरीथिंग, लेकिन कोई भी सजेशन फील्स लाइक क्रिटिसिज्म टू हिम। इफ आई से मे बी वी कैन डू दिस डिफरेंटली, इमिडिएटली डिफेंसिवनेस आ जाती है। सो नाउ आई हैव स्टार्टेड कीपिंग क्वाइट जस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। बट मेरी प्रॉब्लम ये है दैट दिस प्रोजेक्ट हैज बोथ आर नेम्स ऑन इट, एंड आई कैन ऑलरेडी सी थिंग्स दैट कुड बी मच बेटर। अगर मैं कुछ ना कहूँ, द फाइनल आउटपुट मे नॉट बी समथिंग ईदर ऑफ अस इज प्राउड ऑफ। तो मैं क्या करूं? What do you do when someone's ego starts getting in the way of the work? What do you do? भाई, ईगो बहुत बड़ी चीज है, इतना तो मैंने भी रियलाइज किया दुनिया में। और ईगो वाले जो लोग होते हैं ना, उनको आप इतना भी कह दो कि तुम्हारी शर्ट का बटन थोड़ा सा खुला हुआ है या हिला हुआ है अपनी जगह से, तो वो उस बात को भी इतना पर्सनली ले लेते हैं कि उनका मूड बिल्कुल बदल जाता है कि मेरे साथ मैं गलत हो ही नहीं सकता, एंड दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। पर खैर, कोई बात नहीं, इस बात का भी सोल्यूशन है, क्योंकि ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। हम रोज रोज अपनी जिंदगी में डील करते हैं विद पीपल विद ह्यूज ईगोस। हाँ, मैं जानती हूँ ये बात। चलिए, छोटा सा ब्रेक, ये वाला गाना खाएंगे आप आपकी ईगो को थोड़ा सा सेटिस्फाई करने के लिए, और फिर उसके बाद में आके बात करते हैं हम कि इनको कैसे झेला जाए।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: हाँ तो भाई, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अबाउट दिस सवाल जो मेरे तक आया है आज, अबाउट वर्किंग ऑन अ कॉमन प्रोजेक्ट विद अ पर्सन विद अ ह्यूज ईगो. एंड इस इंसान की प्रॉब्लम ये है कि उसको कोई भी फीडबैक नहीं दिया जा सकता. लेकिन जब आप किसी प्रोजेक्ट पे साथ में काम कर रहे होते हैं तो इम्पैक्ट तो दोनों के आउटपुट पे होता है ना, तो कैसे दिया जाए फीडबैक. डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा. ऑनेस्टली ये लोग हर जगह पाए जाते हैं, सिर्फ ऑफिस में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं. तो भाई ऐसा है कि पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जब आप किसी ईगो वाले इंसान के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो डोंट मेक इट अबाउट द पर्सन. आप प्रोजेक्ट का सोचिए. इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस डजंट वर्क, आप कहिए डू यू थिंक वी कुड मेक दिस इवन स्ट्रॉन्गर इफ वी ट्राइड दिस, या आई रियली लाइक वेयर यू गोइंग विद दिस, कैन वी एक्सप्लोर अनदर ऑप्शन एज वेल. कभी कभी ना आप क्या कहते हैं इज नॉट, दैट्स नॉट द पॉइंट. आप कैसे कहते हैं, दैट इज द पॉइंट. And this is the other side. You cannot spend pura project apna walking on eggshells, theek hai? Because then you're not collaborating. Aap kisi ki ego hi manage kar rahe hain. Aur wo is seriously exhausting. Agar aapka naam hai attached to the final result, to aapki responsibility hai bhai to speak up. Lekin respectfully, professionally, honestly. और अगर आपका सजेशन फिर भी रिजेक्ट हो जाए तो फिर कुछ बहुत ही सिंपल सी बात कहिए, दैट यू नो वी मे हैव डिफरेंट अप्रोचेस बट अल्टीमेटली वी बोथ वांट दिस प्रोजेक्ट टू सक्सीड, सो कैन वी अग्री दैट द बेस्ट आइडिया विंस वेदर इट्स योर्स और माइन. बिकॉज कोलैबोरेशन इज नॉट अबाउट प्रूविंग कि मेरा आइडिया बेटर है, इट्स अबाउट आस्किंग व्हाट विल मेक द आउटकम बेटर. बस एक यही चीज छोटी सी हम सबको याद रखनी चाहिए कि काम है, व्हेन यू आर एट वर्क, इन बिजनेस, रिलेशनशिप्स, आप अपनी ईगो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और यू कैन इम्प्रूव द आउटकम, क्योंकि समटाइम्स आप दोनों चीजें नहीं कर सकते. और जानते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द रूम इजंट नेसेसरली द वन हु रिफ्यूजेस टू चेंज देयर माइंड. समटाइम्स सिर्फ वो इंसान जिसमें कॉन्फिडेंस है टू लिसन टू फीडबैक, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है. कहीं ना कहीं से ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, घुसा दीजिए, कहिए भैया मैं तो फीडबैक बहुत ही बढ़िया लेता हूं या लेती हूं, व्हाट अबाउट यू. मेक द पर्सन थिंक, मेक द पर्सन जस्ट पॉज एंड रिफ्लेक्ट. काम हो जाएगा बॉस, मुझे बता जरूर देना. डियर मस्ती, दिल से.

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: लाइफ में कुछ इंसिडेंसेस हमें सबक सिखाने नहीं आते, बल्कि मेमोरी बनने आते हैं, ताकि सालों बाद किसी को आप अपनी लाइफ की जर्नी बता रहे हो ना, तो बताते बताते आपके मुंह से हंसी निकल जाए। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड डेफिनेटली अभी मेरे हाथों में जो लेटर है उनकी बातें सुनकर तो मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, जो इन्होंने लिखा है वो बता रही हूँ। डियर मस्ती दिल से, मैं अपनी लाइफ के उस फेज में हूँ जब मैं डेटिंग ऐप से अच्छे शख्स से भी मिला हूँ और बुरे से बुरे लोगों से भी मिला हूँ। सो मेरा एक रीसेंट एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैं उस ब्लाइंड डेट से कैसे भी छिप छिपा के बाहर नहीं निकला, बल्कि मैं उस जगह से उल्टे पांव भाग कर आया हूँ। और वो चीजें अभी बताने में तो मुझे हंसी आ रही है, पर उस वक्त जब हुई थी मेरे साथ तो मुझे बहुत ही अजीब लगा था, डर सा भी लगा था। तो हुआ क्या था इनके साथ, इन्होंने लिखा हुआ है कि मैं किसी ब्लाइंड डेट पे गया और जिनकी फोटो मैंने ऐप के थ्रू देखी थी वो मुझसे मिलने नहीं आई, पर हाँ उनका एक 20 साल के बाद वाला वर्जन मुझसे मिलने आया था। मतलब उन्होंने अपनी टीनेजर की या फिर अपनी 20s की पिक्चर्स डाली हुई थी और वो खुद 40s की थी, और पता नहीं मैं कैसे इन बातों में आ गया। सो डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहली बात, आप किसी की एज बाइफर्केशन के हिसाब से, उसके लुक के हिसाब से उसे जज मत कीजिए, ठीक है? और अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी रियल लाइफ मोमेंट्स को एंजॉय करना भी चाहते हैं तो ऐसे इंसिडेंसेस के लिए रेडी रहिए, ओके? और डेफिनेटली आपको डर लगा होगा, जो आपने सोचा वैसा नहीं निकला, मतलब एकदम वो कहते हैं ना सुर्खियों में, खबरों में आने वाली बात हो गई आपके साथ, तो ये शायद आपके लिए अलर्ट मोड था कि आपको ना थोड़ा और सतर्क हो जाना चाहिए। इन एप्स का यूज कीजिए, पर वाइजली, नॉट ओवर यूज। एंड मैं तो अभी भी इन चीजों के फेवर में नहीं हूँ, मैं तो फुल ऑन कहती हूँ आपको रियल लाइफ पीपल जो मिल रहे हैं ना, उनको जानिए, उनको समझिए और फिर उनके साथ लाइफ में आगे बढ़िए। क्यों किसी कहीं दूर बैठे अनजान इंसान को ढूंढना है, जो है यही है।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से, मैं हूँ आपकी अंतरा आपके साथ। और अगर आपने डाउनलोड किया है मस्ती मीडिया 24/7 का ऐप, देन यस यू हैव कनेक्टेड विद द बेस्ट। चलिए अगली चिट्ठी, और इस चिट्ठी में एक वर्ड है जो हम बहुत इजीली यूज कर देते हैं, फॉरगिव, नहीं माफ कर दो उसे, उसने तो सॉरी बोल दिया है, अब मूव ऑन कर जाओ, क्या ही होगा। बट मूविंग ऑन एक्चुअली दिखता कैसा है, कभी सोचा है आपने? So, चिट्ठी कुछ ऐसे कहती है, that dear Masti, someone very close to me hurt me badly a long time ago and our relationship eventually ended. Recently, they came back and genuinely apologized. They acknowledged that what they had done and honestly, I believe them. So, I don't carry that grudge basically, but I still don't want the relationship back. They keep asking me if you have really forgiven me, why can't we start again? And now I'm wondering if maybe I haven't actually forgiven them. So, kya forgiveness have to include another chance? So, my dear listener, aap hurt hue, relationship khatam hua, time laga, gussa bhi kam hua. सामने वाला वापस आया, सिंसियरली अपोलोजाइज किया, आपको अपोलोजी जेन्युइन भी लगी, आपको लगा हाँ मैंने माफ कर दिया, लेकिन सवाल आया अगर माफ कर दिया तो रिलेशनशिप वापस क्यों नहीं। एंड सडनली यू आर क्वेश्चनिंग योर ओन फीलिंग्स, बिकॉज हम फॉरगिवनेस को अक्सर ना एक पैकेज सा बना देते हैं कि सॉरी बोला, माफ किया, चलो अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बट क्या सब पहले जैसा होना जरूरी है? अगर आपके अंदर अब गुस्सा नहीं है, आप उनका बुरा नहीं चाहते, बट समथिंग इनसाइड यू स्टिल सेज दैट आई डोंट वांट टू गो बैक देयर हाउ इट वाज, तो वो क्या है? क्या वो अनफॉरगिवनेस है, क्या वो फियर है, लॉस ऑफ ट्रस्ट है, सेल्फ प्रोटेक्शन है, या सिंपली एक्सेप्टेंस दैट समथिंग चेंज्ड। और सामने वाले की साइड भी है ना, कि मे बी दे हैव जेन्युइनली चेंज्ड, दे हैव एक्नॉलेज्ड द हर्ट एंड परहैप्स दे आर थिंकिंग दैट आई नो आई मेस्ड अप बट कांट वी ट्राई अगेन। सो आई अंडरस्टैंड बोथ साइड्स, कि वन पर्सन सेज आई हैव अपोलोजाइज्ड, कांट वी रीबिल्ड, एंड द अदर से दैट आई हैव फॉरगिवन यू बट आई डोंट नो इफ आई वांट टू। एंड दैट्स वेयर द रियल क्वेश्चन बिगिंस, कि फॉरगिवनेस, ट्रस्ट, अनदर चांस, रिकंसिलिएशन, क्या ये सब एक ही चीज है या हमने इन्हें अननेसेसरीली एक ही साथ टाई करके रखा है? Let me give it little more thought, because मुझे भी एक बात और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझना जरूरी है, that forgiving someone and trusting them again and allowing them back into your life, क्या automatically ये साथ आते हैं तीनों? Let me come back अगले इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद, एंड फिर मैं आपकी बात का जो है जवाब देती हूँ on Dear Masti दिल से, so stay tuned.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मैं अंतरा बिल्कुल आपके साथ। इस म्यूजिकल ब्रेक से पहले हमारे एक डियर लिसनर का सवाल था दैट किसी क्लोज पर्सन ने उनको हर्ट किया, रिलेशनशिप उनका खत्म हो गया, काफी वक्त के बाद वो इंसान वापस आए, उन्होंने सिंसियरली अपोलोजाइज किया, अपनी गलती एक्सेप्ट की। हमारे लिसनर को लगता है कि उन्होंने जेन्युइनली फॉरगिव भी कर दिया है, बट दे डोंट वॉन्ट द रिलेशनशिप बैक। और सामने वाले का सवाल है कि अगर माफ कर दिया है तो फिर हम दोबारा स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते हैं। माय डियर लिसनर, मैं इन तीन चीजों को ना अलग अलग रख के सोचना चाहती थी, फॉरगिवनेस, ट्रस्ट एंड रिकंसिलेशन। सो फॉरगिवनेस कैन मीन दैट मैं अब इस हर्ट और गुस्से को लेकर आगे नहीं चलना चाहती। ट्रस्ट मीन्स मैं आपके साथ फिर से इमोशनली सेफ फील करती हूँ, एंड रिकंसिलेशन मीन्स मैं इस रिलेशनशिप को दोबारा चूज करना चाहती हूँ। सो तीनों ऑटोमेटिकली साथ नहीं आते। अ सिंसियर अपोलॉजी डेफिनेटली मैटर्स। किसी का जेन्युइनली कहना दैट आई वॉज रॉन्ग, आई हर्ट यू, दैट टेक्स अकाउंटेबिलिटी, बट एन अपोलॉजी कैन एक्नॉलेज द पास्ट, इट कैन नॉट ऑटोमेटिकली रिस्टोर वॉट द पास्ट चेंज्ड। Maybe trust changed, maybe you changed, maybe आपने बहुत मुश्किल से उस relationship के बिना अपनी peace जो है वो rebuild करी है। लेकिन एक honest question खुद से जरूर I think पूछ सकते हैं आप कि मैं relationship वापस क्यों नहीं चाहती। Is it genuinely because this relationship is no longer right for you? या somewhere you still want the other person to experience what losing you felt like? है ना? है ना? बिकॉज अगर सेकेंड है, मे बी हर्ट अभी भी प्रोसेस हो रहा है, एंड दैट्स ओके टू। बट इफ यू कैन जेन्युइनली से दैट आई डोंट हेट यू, आई बिलीव योर अपोलॉजी एंड आई विश यू वेल, बट आई डोंट वॉन्ट टू गो बैक, देन दैट डज नॉट मेक योर फॉरगिवनेस लेस रियल। आप बिल्कुल सिंपली कह सकते हैं कि आई हैव फॉरगिवन व्हाट हैपेंड, बट फॉरगिविंग यू एंड रीबिल्डिंग अ रिलेशनशिप आर टू डिफरेंट डिसीजंस फॉर मी। एंड आई थिंक ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है इफ यू कम टू थिंक अबाउट इट। समबडी कैन जेन्युइनली चेंज एंड यू कैन स्टिल डिसाइड नॉट टू रिटर्न। उनका जो ग्रोथ है दैट ऑल्सो डिजर्व्स रिस्पेक्ट। नहीं, it doesn't automatically create an obligation for you, and agar aapka dil does want to explore another chance, take it slowly. Ek apology se trust instantly rebuild waise bhi nahi hota hai. Trust comes back through consistent behavior over time. So my dear listener, to answer what you wrote to me, no, forgiveness doesn't always have to include another chance. Sometimes forgiveness says I release what happened. Reconciliation says, I choose this relationship again. You are allowed to do the first without promising the second. Yes, so that was that. But just in a while, अब से कुछ ही देर में एक और चीज होने वाली है। हमारे संघर्ष साथी श्रीधर जो है वो हमें 7 बजे के उस पार ज्वाइन करने वाले हैं। वो हर बार हमारे लिए हमारे साथ जुड़कर जो है इस मिशन में साथ में काम कर रहे हैं। तो सुनेंगे उनसे भी कि इस बार वो क्या रियल लाइफ केस जो है वो लेकर आकर हमसे बात करने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहे ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
4: Dear Masti, Dil Se, because sometimes radio par baitha ek anjana insaan aapko duniya se zyada samajh leta hai.
5: बाहर वाले कुछ भी बोल जाए ना चलता है, पर जब घर वाले वैसा करते हैं ना तो थोड़ा अजीब हो जाता है और याद भी रह जाता है. डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड मेरे हाथों में जो लेटर है उसमें लिखा हुआ है, डियर मस्ती दिल से, मेरी एक नीज है, दूर की है पर सिंगापुर में ही रहती है, और उसने मुझे अपनी शादी का इन्विटेशन भेजा और साथ ही साथ ये भी बोला कि ड्यूरिंग माय होल वेडिंग, आप इतने अच्छे फोटोग्राफर हो तो आप पूरी वेडिंग मेरी कवर कर लेना. तो ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने अपना जो कोटेशन है ना वो उसे भेज दिया, पर्टिकुलर इतने इतने डॉलर का. पर सामने से आया कि आप मेरी वेडिंग, आपकी जो नीज हूँ मैं, मेरी वेडिंग का अमाउंट चार्ज करोगे. तो उन्होंने बोला हाँ तुम घर वाला अमाउंट दे देना, इतना हो जाएगा, बाकी तो क्या है, मैं तो रहूंगा देख लूंगा. तो सामने से जवाब आता है कि नहीं, आपको अगर करना है तो फ्री में कीजिए, वरना मैं आपसे रिश्ता नहीं रखूंगी, आप मेरी शादी में इनवाइटेड नहीं हो. तो ये सिचुएशन इनके लिए बहुत ऑकवर्ड हो गई. ओ माई गॉड. सो ये तो ट्विस्ट मैंने सोचा भी नहीं था. सो जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है उन्होंने ये भी बताया है कि वो फिर उस वेडिंग में कभी नहीं गए और आज भी इस चीज को सबक की तरह रखते हैं. क्या बात है, क्या बात है. बाय द वे, जो आपने इंसिडेंट्स मुझे भेजा है ना, इससे मुझे भी याद आया कि कुछ साल पहले मेरे किसी रिलेटिव ने मेरी यही मतलब बोलने वाली आर्ट को, वॉइस ओवर्स को ना इस तरीके से ही मांगा था और मैंने भी साफ मना कर दिया. मैंने कहा घर वाले रेट लेंगे, ऐसा होगा. वो दिन है, आज का दिन है, उनका कभी कॉल नहीं आया. सो डेफिनेटली इससे हमें एक टेक अवे भी मिल रहा है और जिन्होंने मुझसे ये इंसिडेंट शेयर किया है, थैंक यू सो मच. एक टेक अवे ये है कि आपको अपनी आर्ट और अपना पर्सनल रिलेशन जो है, फैमिली रिलेशन वाला जो एक रिश्ता होता है, वो कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, अदरवाइज चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, राइट. और एक बार अगर आप अपनी आर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे फिर कुछ काम नहीं होने वाला.
6: प्यारे हमको भी है, प्यारे तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए.
5: डेफिनेटली गानों का सिलसिला मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ डियर मस्ती दिल से शो पर.

0: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa. Ganpati bappa!
1: और इसी के साथ वक्त हो गया है कि आज के डियर मसी दिल से को रैप किया जाए। नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स. डियर मस्ती दिल से. और आज फिर कितने अलग अलग टॉपिक्स, कुछ सीरियस, कुछ अनकंफर्टेबल, कुछ एवरीडे लाइफ के टॉपिक्स. और आपके लेटर्स का आना कंटिन्यूज, विच टेल्स अस वन थिंग, कि आप हमें ट्रस्ट करते हैं. यू ट्रस्ट डियर मस्ती दिल से. जब हमने शो शुरू किया था, एक प्रॉमिस किया था, नो नेम्स, नो आइडेंटिटीज, कंप्लीटली अनोनिमस. और वो प्रॉमिस आज भी पक्का है. इनफैक्ट कुछ लिसनर्स ने और ज्यादा गाइडेंस के लिए हमको रीच आउट किया है, और हमारे पार्टनर जो हैं संघर्ष साथी, दे आर ऑलरेडी बिजी कनेक्टिंग विद देम. तो भाई क्लियरली कॉन्वर्सेशंस रेडियो से आगे भी जा रही हैं, एंड दैट्स वंडरफुल. तो अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है, बड़ा है, छोटा है, सीरियस है या थोड़ा हटके है, क्रेजी है, तो हमें ज़रूर लिखिएगा. ऑफ कोर्स यू नो हाउ टू रीच अस. हमारे मस्ती मीडिया 24/7 ऐप के टॉप राइट कॉर्नर पर आप देखेंगे बहुत सारे तरीके हैं. ईमेल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, यहाँ तक कि टिकटॉक भी है. कहीं भी लिखना चाहेंगे जरूर लिखिए हमें. नाम हम कभी नहीं बताएंगे, बात जरूर करेंगे. माय नेम इज रेणुका. मिलते हैं अगले ट्यूसडे को डियर मस्ती दिल से. टिल देन हैव अ फैंटास्टिक इवनिंग, अ फैंटास्टिक वीक अहेड, एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हमारे बिना आपकी लाइफ अधूरी है. वी प्रॉमिस यू दैट. बाय फॉर नाउ.

0: Går det med?
1: जागो जागो जागो, सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय ठंडी।

0: जाग जा,
1: जल फोट भाग जा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है, वो भी तो सोया पड़ा है।
0: ए, ए विलन बादशाह, ये क्या करता है?
1: अरे क क क कसरत करता है, देखता नहीं क्या तू?
2: अरे इसे कैसे होता है? मैं

0: से पूजा तो करने दो मुझे, सारा दिन झगड़ा ही करोगे क्या है?
1: अरे साला, अभी तक लड़े हुए तुम लोग?
2: अरे छोटू, अरे तेरी तो
1: अब उनको हाथ नहीं लगाना।

0: रात अकेली है।
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

0: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
1: शशि वो मैनहट्टन है।
0: मैनहट्टन
2: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
1: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है जोश में रहो।
2: अच्छा 1956 में एक और फिल्म थी आवाज
3: तररम तररम

दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो, तो सिद्धा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो, तो सिद्धा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखिए निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके

शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।

गोकुल में जो करे निवास, गोपियों संग जो रचाए रास, देव की यशोदा है जिनकी मैया, ऐसे है हमारे कृष्ण कन्हैया। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

गोकुल में जो करे निवास, गोपियों संग जो रचाए रास, देव की यशोदा है जिनकी मैया, ऐसे है हमारे कृष्ण कन्हैया। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

राधा की भक्ति मुरली की मिठास, माखन का स्वाद और गोपियों का रास, इन्हीं सबसे मिलके बनता है जन्माष्टमी का ये दिन खास। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

राधा की भक्ति मुरली की मिठास, माखन का स्वाद और गोपियों का रास, इन्हीं सबसे मिलके बनता है जन्माष्टमी का ये दिन खास। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: गो गो गो गोविंदा, गो गो गो गोविंदा। ओए होए क्या दिन है यार।
1: Setting the perfect hot temperature for Friday. मस्ती मैडनेस विद
2: यू। मैंने कहा कि आज फ्राइडे का मौसम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हो गया। आते ही मेरे रेणुका कह रही है गो गो। मैंने कहा मैं उठने ही वाली थी, फिर उन्होंने कंप्लीट किया कि ओहो अच्छा ये तो गाने के बारे में बात कर रही है। मैं अभी खुश होने लगी कि नहीं आज फ्राइडे जन्माष्टमी है, गो गो गो।
0: हाँ हाँ गो गो गो गोविंदा, नॉट गो गो गो अंतरा, स्टे स्टे स्टे अंतरा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओए होए होए होए, मतलब माखन वाखन खाओ, मजे मजे करो। क्यों भाई अंतरा जी, हाउ डू यू सेलिब्रेट?
2: बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो नहा धो के पोछा ऊछा करके, क्योंकि बहुत जल्दी आना पड़ता है, तो आज तो मतलब और भी सवेरे सवेरे उठा गया है। आज हम बिल्कुल क्या कहते हैं, एकदम एकदम साफ सुथरे आए हैं, एकदम नहा धो के एकदम आसन के साथ।
0: आज बस मुझे इसको देख के लगा कि काश ये रोज अपने कर्म भूमि को इतना अच्छा समझती, इतना ज्यादा पूजनीय समझती कि थोड़ा बहुत नहा धो के आती। बट या आप जानते हैं कि अंतरा वेयर्स दिस ब्यूटिफुल अपने गले में कृष्ण और राधा जी का लॉकेट है ना। इट्स सो प्रिटी, इट्स सो प्रिटी, इट्स सो प्रिटी कि मेरा कई बार मन करता है कि मैं छीन के भाग जाऊं, लेकिन फिर नहीं, ऐसा काम तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल, एंड इट्स मतलब इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माय आइडेंटिटी ओनली। मतलब कोई मुझे पहचाना ना पहचाने कि अच्छा ये वही है। और मुझे लगा कि कहीं पे भी मैं खो भी जाऊँ ना, मेरी शिनाख्त करने के लिए मेरा ये पेंडेंट ही काफी होगा।
0: ओह गॉड, देखो सुबह सुबह गंदी बातें, पहले ही आसपास की न्यूज इतनी। अंतरा आज फ्राइडे है, नो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक एनीथिंग।
2: कृष्ण जन्माष्टमी है,
0: आज सिर्फ हम माखन खाएंगे, आज हम सिर्फ चोरी करेंगे, आज हम
2: नहीं, खबरदार मेरी खबरें चुराई तो खबरदार।
0: और पार्थ हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। ये है कृष्ण जन्म का पूरा सार। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज मस्ती मैडनेस।
1: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे।

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना, इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
1: मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: भाई इतनी भक्ति हम कहाँ लेकर जाएंगे? मैं बिल्कुल मैं भी यही सवाल पूछ रही हूँ और आप भी ये सवाल पूछोगे once we talk about this.
2: फ्राइडे मॉर्निंग्स को फंकीज बनाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं रेडियो मस्ती 24/7 पर अंतारा एंड रेनुका. बताओ खबर.
1: खबर कुछ ऐसी है कि भाई जब ये भक्तगण आज कृष्ण जन्माष्टमी है, मैंने सोचा इसी खबर के साथ शुरू किया जाए. जब भक्तगण हैं एंड स्पेशली मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, वो कभी कभी ऐसी चीजें कर जाते हैं कि हम बहुत ही क्वेश्चनेबल हो जाते हैं कि भाई कहाँ गई, भाई क्यों कर रहे हो ऐसा. तो ये मंदिर के बाहर जो है ना, अक्सर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है भक्तजनों की, राइट. तो कई बार कई सारे मंदिरों में जस्ट लाइक दिस क्या करते हैं कि अंदर जो मेन जहां पे प्रतिमा रखी होती है ना, वहां पे कैमरेज लगा देते हैं और बाहर स्क्रीन लगा देते हैं कि भाई जो अंदर दर्शन कर रहे हैं, बाहर खड़े हुए हो तुम्हारे लिए है, तुम बाहर से दर्शन अभी के लिए कर लो जब तक तुम इंतजार कर रहे हो, ठीक है. अब वहां पर शुरू कर दिया इन लोगों ने, ये लोग गंगा जल लेकर पहुंचे हुए थे. अब अंदर तो अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो टीवी स्क्रीन के ऊपर मघा मघा गंगा जल छिड़के जा रहे.
2: ओह माय गॉड, क्योंकि रहा नहीं जा रहा ना यार, मतलब रहा नहीं जा रहा, क्या करें,
1: खड़े हुए हो बाहर, अंदर ही तो जाना है. जो तुम यहाँ पे छिड़क रहे हो अंदर जाके भी यूज कर सकते हो, वाई स्पॉइल, वो फिर खराब होगा, फिर ये लोग फिर वापस से नया लगाएंगे, फिर खराब होगा, क्योंकि इट टेक्स जस्ट वन पर्सन टू स्टार्ट इट एंड इट इज नेवर एंडिंग.
2: क्या बात है. या फिर वो जो मंदिर है वहां पर उनको दर्शन अभिलाषियों के लिए, ओह माय गॉड, उनके लिए बाहर एक टीवी के आगे ना, स्क्रीन के आगे एक जाली सी लगा के कुछ ऐसा करना चाहिए, ताकि उन्हें पता है कि लोगों को कंट्रोल करना तो आसान नहीं है, लेकिन हाँ उस प्रोसेस को चेंज करना, बीइंग अ प्रोसेस एक्सपर्ट दैट आई एम, उसके अंदर डेफिनेटली कुछ किया जा सकता है. भैया यू कांट कंट्रोल डिवोशंस इन इंडिया, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, इज एज सिंपल.
1: Crazy.
2: So just play around it. सबसे स्मार्ट बात वो ये है ना भाई. गुड मॉर्निंग, आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं.

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food, and community come together. Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan jamming? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। नॉट योर यूजुअल सिट एंड वॉच शो, सिंग अलोंग, क्लैप अलोंग, जैम अलोंग। Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a Masti Partner event.
2: जी जी, मैं वापस आ गई बीच में। क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ हो बताने के लिए तो मुझे बीच में आना ही पड़ा। सिर्फ वो कुछ शामें एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं और कुछ शामें फील करने के लिए होती है। एंड इफ यू वर देयर फॉर प्रीवियस एडिशंस ऑफ इश्क सूफियाना, अमित धमेलिया जी का इश्क सूफियाना, दैट्स राइट, सो यू ऑलरेडी नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दो एडिशंस हो चुके हैं, सो मच लव, सोल्ड आउट शोज, एंड अप बाय पॉपुलर डिमांड दैट ब्यूटिफुल सूफी एक्सपीरियंस इज बैक फॉर थर्ड एडिशन। परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है वो लाने वाले हैं इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया, एक ऐसी शाम जहां पर सोलफुल म्यूजिक, सूफी फ्लेवर्स एंड टाइमलेस मेलोडीज, दे ऑल कम टुगेदर। सो देयर इज समथिंग अबाउट सूफी म्यूजिक में सुनाई कम देता है और महसूस ज्यादा होता है, एंड व्हेन इट्स लाइव सराउंडेड बाय पीपल सिंगिंग एंड फीलिंग दोस सेम सॉन्ग्स विद यू, वाइब ही अलग हो जाती है। सो इफ यू हैव मिस द प्रीवियस एडिशंस या फिर अटेंड भी किया है तो डेफिनेटली दिस वन ऑल्सो यू नीड टू गो for it. Ishq Sufiana, 26th of September, Saturday ka din hai, shaam ko 7 baje se 9 baje tak. Ye hai auditorium Civil Service Club at Tessenson. Tickets jo hai wo priced hai $60 and $80 ke liye. Of course, this is hamare very own Amit Dhamelia ji ka Ishq Sufiana, where soul meets melody and love becomes timeless. So well, der mat kijiye, tickets le lijiye abhi ke abhi. And wo kaise le sakte hain? You can just connect with them, pay now 8138279 0 per.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: मैं और तू धुरंधर का गाना ना सुनो तो ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है जिंदगी में, है ना भाई अंतरा जी, आपको क्या लगता है?
0: Setting the perfect hot temperature for Friday.
2: एक एल्बम इन्होंने अच्छा दिया, हम उसको ऐसा निचोड़ लेंगे ना, अब क्या करें, ऑप्शन ही क्या है हमारे पास.
1: और अब रहा भी नहीं जाता, हर थोड़े दिनों में ऐसा लगता है कि यार धुरंधर का एक गाना तो सुने, यू नो,
2: एक गाना
1: इस तरह से अंदर तक घुस चुके हैं ये गाने हमारे. खैर हम आपको लेके चलेंगे, गर्मी बहुत हो रही है आजकल, मैं आपको लेके चलूंगी इंदौर भारत में, राइट, एंड मस्ती मैडनेस पर अलग अलग तरीके की खबरें लाते हुए. दिस इज लाइक रियली इंटरेस्टिंग. तीन टीनेजर्स इन इंदौर हैव एक्चुअली इन्वेंटेड थर्मा वॉल्ट. ये है एक इलेक्ट्रिसिटी फ्री पोर्टेबल मिनी रेफ्रिजरेटर जो सिर्फ, यू वोंट बिलीव इट, सिर्फ सॉल्ट और पानी, जी हाँ नमक और पानी से चलता है. कैन यू बिलीव इट, इट्स अमेजिंग. सो दिस केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है कि एक हीट एब्जॉर्बिंग जो ये डिवाइस है वो यूज करता है एंडोथर्मिक, विच इज द रिएक्शन जिसे कहते हैं, एंड ये डिसॉल्व करता है स्पेसिफिक सॉल्ट सच एज एमोनियम क्लोराइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑक्टाहाइड्रेट इन वॉटर. और उसके बाद अगर आप 2 से 6 डिग्री तक का टेम्परेचर 10 से 12 घंटे तक मेंटेन करो तो वो बिल्कुल वैक्सीन, मेडिसिन, इन सबको स्टोर करने के लिए, इवन इट कैन रीच सब जीरो टेम्परेचर्स फॉर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट, मतलब इस तरह का वो हेल्प कर सकता है ऑब्वियसली इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री. और क्या करना है, जो यूजर्स होते हैं ना वो बॉयल कर सकते हैं सोल्यूशन को टू इवेपोरेट द वॉटर एंड रिकवर द सॉल्ट, सो फिर रीयूजेबल भी है विदाउट नीडिंग आइस और पावर. सो इस चीज को ना इन बच्चों ने, एक्चुअली खुद तो ही टीनेजर्स हैं, तो जब कोविड हुआ तो ये बहुत छोटे थे और तब इन्होंने बड़े होने के बाद पढ़ा कि भैया क्यों नहीं विलेजेस तक पहुंच पाए वैक्सीन, बिकॉज ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये वो नहीं है, तो उन्होंने वो सोच के किया. एंड अब इनको मिला है 2025 का अर्थ प्राइज एंड $12,500 जो पैसे मिले हैं. 200 यूनिट्स दे आर गोइंग टू यूज दैट मनी टू प्रोड्यूस 200 यूनिट्स 120 हॉस्पिटल्स में टेस्ट रन में. इजंट दैट ऑसम.
2: फर्स्ट हाफ में तो मुझे सडनली लगा कि मैं ना साइंस की क्लास में वापस से चली गई हूँ, इतने सारे टर्म्स इन्होंने ले लिए एक सांस में, तो आई वाज लाइक ओके. बट दिस आल्सो रिमाइंड्स मी, हम लोग के ना स्कूल में वो एग्जीबिशंस और फेयर्स हुआ करते थे जहाँ पे वी यूज्ड टू मेक दीज मॉडल्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन सब के, जिसको ऑप्शन में विंडमिल जो है ना वो बहुत ही कॉमन एक प्रोजेक्ट हुआ करता था, कई सारे विंडमिल्स बनते थे.
1: शॉर्ट ब्रेक हियर, वी आर गोइंग टू कम बैक एंड टॉक अबाउट विंडमिल्स, ओके, एंड द प्रोजेक्ट्स हमारे बचपन के. विंडमिल्स की बात हुई और हवा हवा गाना आ गया, चलो सुनते साथ में.

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow, I could have thought of anything. That's amazing.
0: Salman Khan wanted answers.
2: कैसे किया ये?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome.
4: You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
5: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
6: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. One Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
7: How do you know these things? Stop reading my mind.
8: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
9: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
0: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत,
8: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
0: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल,
10: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस।
0: गुड्डू पंडित का बदला,
11: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
0: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु, रिलीजिंग 4th September, Island Wide एट द सिनेमाज नियर यू, ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।

0: ब्रेक से पहले हमारी यहाँ पर बात हो रही थी बचपन के स्कूल के प्रोजेक्ट्स के बारे में, और अंतरा जी ने दिल की तार छेड़ दी। भाई साहब, जिस दिन साइंस की एग्जीबिशन होती थी, दो चार विंड मिल्स तो आपके आसपास ही खड़े हुए होते थे।
1: Dainik Friday mornings, the suburb.
2: Somehow it took away the popularity vote. मतलब that is for sure that आपके दो चार तो windmill होंगे ही होंगे, for sure. That was the like most popular one. And somehow my dad always used to know that. So he was like कि हम windmill नहीं बनाएंगे, क्योंकि windmill कोई ना कोई बनाएगा ही बनाएगा. Let's choose something जो लोग उतना ज्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि जहां पर ही थोड़ा सा complex हो गया, थोड़ी मेहनत आ गई, वो चीज लोग choose नहीं करेंगे.
0: बिल्कुल बिल्कुल. And my dad being an engineer, right? अच्छा, and me being somebody least interested in science, so especially physics chemistry type का science, मैं doctor बन भी जाती, but I would have never been a physician or a chemical तो नहीं बोल सकते, ना chemist बोल सकते, chemistry professor, alright scientist कभी नहीं बन पाती मैं. So anyway, हुआ कुछ ऐसा कि मैंने बनाना था प्रोजेक्ट. अब वही प्रोजेक्ट वाले दिन, लोग बच्चे कितना इंपॉर्टेंट फील करते थे ना, जब स्कूल बस में चढ़ते थे या समथिंग, उठा के अपना प्रोजेक्ट, हर कोई ओ सेव इट, नो डोंट टच, है ना. और बाकी सारे बच्चे कूद पड़ते थे, दिखाओ. आधे ज्यादा बच्चों के तो टूट भी जाते थे रास्ते में स्कूल बस में, है ना. विंडमिल तो बड़े सारे गिरे हैं नीचे. हाँ, तो फिर क्या हुआ, मैंने बनाया था फार्म हाउस, ठीक है, उसमें पूरा वो कॉर्नर का फेंस बना के, और उसमें पूरे वो जानवर खड़े करे, और एक वेल लगाया जो कि मोटर से चल रहा था, ठीक है.
2: ओके.
0: वो क्यों चल रहा था, क्योंकि पापा के ऑफिस में एक जूनियर इंजीनियर ने बना दिया था, मैंने कुछ नहीं किया. तो इससे पहले कि कोई मुझसे इंप्रेस हो, मुझे तो ये भी नहीं पता वो एंड में मोटर चलती कैसे थी, बट एनीवे ऑल दैट हैपेंड. और उसके बाद मेरे को मिल गया प्राइज. अब उन्होंने पूछा कि भैया दिखाओ ये कैसे करा तुमने, क्या किया. अब वो समझ नहीं आया, तो फाइनली टीचर को पता लग गया कि मैंने ना चीटिंग करी होगी. सो
2: I clearly remember. So dad रात को मैं और dad बैठ के, कि साथ में बैठ के तुम देखती रहो कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, so that you are able to explain tomorrow. So हमने बनाई थी mechanical elevator, ऊपर नीचे जाती है, but in the mechanical again my dad engineer and everything. So मैं तो सो गई बगल में बैठे बैठे. मेरे डैड रात भर लगे हुए मैकेनिकल एलिवेटर लगाने के लिए. और अगले दिन जाके मैं तो प्रेजेस एंड वेरी नाइस प्रोजेक्ट एंड दिस एंड दैट, और मुझे एक एक दो पैसे का कुछ याद ही नहीं.
0: एग्जैक्टली. तो भैया ऐसा
2: क्या हुआ था इसमें,
0: जितने बच्चे इस टाइम ट्यून्ड इन है, मम्मी डैडी को बोलो प्रोजेक्ट बना दें, ठीक है. इट डजंट हेल्प एनीवे इन लाइफ.

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
1: कृषिवल नट्स, ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa.
4: Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
5: Check it out.
1: क्या करेगा ये आदमी, कैसे करेगा ये आदमी, क्यों कर रहा है ये आदमी ऐसा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है।
6: बात तो सिर्फ आदमी बता सकता है रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ, हम हैं यहाँ पर रेणुका एंड अंतरा, एंड ऑफ कोर्स इस फ्राइडे मॉर्निंग शो। सो प्लीज अगर आप पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, तो हम इसी शो में ऐसी बातें करते हैं, वी प्रॉमिस यू।
1: ब्रायन जॉनसन की एक और खबर लेकर आई हूँ मैं रेणुका। अब ये जो हमारा आदमी है, मुझे तो ये लग रहा है कि क्या बचा ही क्या है इसके जीवन में, मतलब इतना भी सात्विक और इतना अलग लेवल पे अपना ध्यान रखना और मतलब सबसे अलग हो जाना और अपना लॉन्ग, जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू लिव रियली लॉन्ग, मतलब क्यों कर रहा है। बट एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर थिंग्स ही हैज डन, दिस इज अनदर वन एडिंग टू द लिस्ट। सो ही हैज टेकन अपना स्लीप ऑप्टिमाइजेशन इतना सीरियसली कि वो ये कहता है कि ही हैज नेवर शेयर्ड अ बेड ओवरनाइट विद हिज लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड केट टोलो। 4 साल से ये साथ है, बट जॉनसन भाई साहब हमारे कहते हैं कि दे स्लीप सेपरेटली एंड अलग अलग घरों में भी रहते हैं, बिकॉज ही बिलीव्स अ पार्टनर मूविंग, मेकिंग नॉइज और वेकिंग अप ड्यूरिंग द नाइट कैन डिस्टर्ब द क्वालिटी ऑफ हिज स्लीप। इट मैटर्स, क्योंकि वो उनके लॉन्गेविटी के रूटीन के लिए काफी हेल्पफुल है, एंड ही बिलीव्स कंसिस्टेंटली इंटरप्टेड स्लीप कुड वर्क अगेंस्ट दोज गोल्स। रेणुका, क्या कहना है आपका इस बारे में? अच्छा, मेरे को पूरी बात कर दो। वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि कह तो रहे कि हम अलग अलग घरों में अपना नाइट स्पेंड करते हैं अलग अलग, मेकिंग अ क्लेम कि उनकी सेक्स लाइफ भी अच्छी है। मेरा सवाल है कैसे?
6: देखो, ये वही बात है जब माँ बाप बोलते थे बचपन में कि भाई शाम को टाइम से आ जाना, तो ऐसा कौन सा काम है जो इंसान सिर्फ शाम को ही करता है, दिन में भी तो कर ही सकता है। मतलब थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द नाइट, जो करना है इंसान, बेड दिन में भी है, पार्टनर दिन में भी है, सामान तुम्हारा दिन में भी चल रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? ये व्हाई इज स्लीप कमिंग इन बिटवीन सेक्स और अदरवाइज, राइट? सो लॉन्जेविटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान बहुत अच्छा कर रहा है। बाकी ये और क्या क्या कर रहा है, इसकी जो गर्लफ्रेंड है ना, उसको कैमराज लगाने चाहिए रात को देखने के लिए कि वाकई अकेला सो रहा है कि नहीं सो रहा। देखो, हमारा फर्ज है लोगों को आगाह करना। जी, बाकी आपकी किस्मत और आपकी जिम्मेदारी। गुड मॉर्निंग, मिलते हैं अगले घंटे।

गोकुल में जो करे निवास, गोपियों संग जो रचाए रास, देवकी यशोदा है जिनकी मैया, ऐसे है हमारे कृष्ण कन्हैया। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी